0: रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर जेके टायर
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: गोल्ड रश ऑन द फील्ड
2: इंडियाज चैंपियंस आर रेडी
1: द बैटल्स एंड द ब्रेकथ्रूज फ्रॉम द अरीना टू द पोडियम
2: एशियन गेम्स 2026
1: गो फॉर ग्लोरी ओनली ऑन एनडीटीवी
3: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hindustan mile, Hindustan se.
3: देश का टायर जेके टायर
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
6: सबका राजा आर्थ और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: मीठा या नमकीन?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान
2: से, देश का टायर जेके टायर।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आपको हेल्प कितने कितने देर में मिली और किसने हेल्प किया, आप कैसे निकल पाए वहां से?
1: 1-1.5 घंटे के बाद सीनियर्स ने बताया टीम को कि यहाँ पे हमारे बच्चे फंसे हैं, फिर उन्होंने हमें रेस्क्यू करना शुरू किया था।
0: आप में से किसी ने क्या, मतलब आप लोग के पास अगर फोन था, आप लोग में से किसी ने किसी को रीच आउट किया था कि आप यहाँ पे हो, स्टक हो?
1: मेरे दोस्त ने लोकेशन भेजी थी, फोन भी किए थे कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, फिर उन्होंने आगे टीम को बता के हमें निकाला वहां से।
0: जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपको कब तक, क्या आप अपने सेंसेस में थे जब आपको हॉस्पिटल ले गया गया? वहां से आपका पूरा जो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाओ तो।
1: जब लेके गए हॉस्पिटल तब तो काफी ऐसे ही था, बॉडी पूरी सुन्न पड़ी थी, ना काम कर रही थी ना कुछ, सिर से ब्लड निकल रहा था काफी। तो थोड़ी देर के बाद होश आई, तब ठीक था, मैं थोड़ा गुड फील कर रहा था।
0: नितेश जी, इस पीजी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने आपका अग्रीमेंट भी पढ़ा था कि उसमें ये लिखा गया था कि कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें पीजी ओनर जिम्मेदार नहीं है। वहाँ पे जो भी इलीगली चल रहा था, कि आप लोग कभी भी इस चीज को ओनर से कंप्लेन किए या ये इश्यूज रेज किया आपने कि वो बच्चे भरे जा रहे थे वहाँ पर और वो बिल्डिंग काफी वीक हो चुकी थी, तो ये सब कभी आप लोग ने रेज कर पाए ओनर से?
1: ना हमें पता ही नहीं लगा कि बिल्डिंग गिर जाएगी, या इस सिचुएशन में आएगी बिल्डिंग गिर जाएगी। बिल्डिंग बाहर से तो पूरी ठीक ही लग रही थी, अंदर का इतना पता ही नहीं था कि गिरने वाली है।
2: Let's get you break news coming out of Tamil Nadu, and a man has been hacked to death in Chennai. This was last night over a loan dispute between two mothers. The lender's mom attempted suicide over the non-payment, that was the non-return of a 9 lakh rupee loan. Her enraged son allegedly killed the borrower's son. This is the police there denying that the victim's family had sought protection, fearing threat to life. The police claim they had warned both sides, anticipating trouble with new angles that are emerging in this murder case in Chennai. So these are unverified videos that NDTV cannot independently verify, showing the deceased man speaking out against the police. And that is the video in which, in fact, this is before his death, the cops were threatening me, and Udayanidhi Stalin has raised his voice, in fact raising that policeman angle as far as his tweet is concerned. The leader of opposition in Chennai, they're talking about how is it that the ones who are raising their voice end up dead. That is what is being said, that citizens seeking police protection end up murdered is the charge that is being made by Udayanidhi Stalin. We have Sam Daniel, my colleague, joining us in order to get us more on this. But before we get to Sam, let's listen in to what has been said.
3: இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிட்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கு கூப்பிட்டு நீ என்ன வந்து உங்களுக்குள்ள மோட்டிவேஷன் இருக்கு, நீங்க மாறி மாறி வெட்டிப்பீங்கன்னு எனக்கு வந்து தகவல் வருது. இது மாதிரி சொல்றாங்க, போறாங்க, வரான்னு சொல்லும் போது நான் கேட்டேன், சரி எதனா அதுக்கு ஆதாரம் என்ன சொன்னதுக்கா, நான் பேசின ரெக்கார்டு எதனா இருக்கா, நீங்க என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க, காட்டுங்க, நான் வந்து இதை வந்து இது பண்றேன் சார் அப்படின்னும் போது, நீ என்ன பெரிய இதுவா சார், உயிரோட இருந்தேன் நான் பாத்துடுறேன், நீ வந்து உன் கை காலை உடைச்சிருவேன், உன்னை சுட்டுடுவேன், உன்னை சுட்டு சாவடிச்சிருவேன், உன்னை வெட்டி திருச்செந்தூர்ல திரும்ப போய் கரைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டேஷன்ல இருக்க இன்ஸ்பெக்டர் வந்து இது மாதிரி சொல்லி என்னை வந்து கொலை மிரட்டல் விடுற.
2: Well, we have Sam Daniel, my colleague, joining us in order to get us details on this. Sam, of course, a lot of allegations that are being raised in this particular regard, particularly in regard to an inspector who said, you know, you won't stay alive. I will frame you in a false case and throw you in jail and you can go complain to the chief minister. That is what has been said in a video, and that is the issue that's being raked up by Udayanidhi Stalin. Please talk us through what really happened here in this case. How was this young man killed?
4: The fact of the matter, Divya, is that it began, police say, in a tussle between two mothers over one lady lending another lady around 9 lakh rupees and the money was unpaid. It was in that dispute the lady who lent the money attempted suicide, and enraged by that, her son, police say, targeted the borrower's son. He was hacked to death yesterday, and police say they sent some trouble, and the previous day they had summoned both these men and warned them. But in a video which NDTV cannot independently verify, the man who was hacked to death yesterday is seen to be saying that when the police inspector from Thiruvottiyur police station had summoned him, he was threatened by the inspector that he can even

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
1: I'm on the banks of the Narayani River here in Bharatpur district. What you see now is two bodies that have just been recovered from the Narayani River. One of the bodies is now being taken to the ambulance.
2: More than 350 bodies have already been taken out in a stretch of 50 kilometers.
3: I've come across a knapsack, obviously of a school child, and I know this because these are school textbooks.
2: A crisis of food articles, daily amenities. These are live pictures of landslide happening just across the river.
1: These are images of those who are missing.
4: Standing right in front of a monastery where the last rites.
3: This is a power substation that I'm at, which is completely destroyed.
1: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground.
2: Real-time rescue operation in the middle of Trishuli River.
5: Two houses here that were struck last night.
0: The heat.
5: The telltale signs of what.
0: The dust.
5: Something has changed in Pahalgam.
0: The front lines. That's Shiv's India.
5: Pakistan Army has violated the ceasefire on the line of control.
0: Its hopes.
6: Congrats, Chief Minister Vijay.
0: Its yearning. Its dreams. At 9, he brings it all home. Your stories, your fights, your voice. Because what matters to you matters to Shiv. India Matters, 9 p.m. on NDTV.
7: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
8: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal, and Sandy Howe.
7: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
7: Join me, Harisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.
1: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers. There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
7: Who failed? And this remains a campaign here on NDTV.
1: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
10: Launch control, 0 to 100.
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
11: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
14: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
14: It's incredible.
0: He has seen history break. Live, unfiltered, 20,000 hours of live broadcasting.
14: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
14: War struck country.
0: Hard questions.
14: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
15: In the Kargil area.
14: North Ukraine.
16: In France. In Italy.
14: At Srinagar.
17: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom, only on NDTV. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
7: Welcome to NDTV's Emerging Business Conclave 2026, the Mumbai edition.
15: I believed that I am the right person to build my business.
16: Hello and a very good afternoon, viewers. You're watching Breaking Ground with me, Aditya Raj Kaul. It is a big day for India as India takes the center stage at the BRICS Summit at the Bharat Mandapam. Over the next 3 days, NDTV will be getting you all the big updates and exclusive interviews only on NDTV. But first, let's get you the top headlines at this hour. The countdown to the BRICS Summit in India, suspense over Chinese President Xi Jinping. India visit is likely to end today. Sources say details of Xi's arrival for the BRICS summit are expected shortly. Politics erupts over the BRICS summit. Congress trains guns on the center. Asks, how is BRICS benefiting us? BJP hits out, fires nawabs of the negativity attack. Stalin takes on Chief Minister Vijay for George Chester jibe, says he's forgotten dignity altogether, asserts all this is to hide his incompetence as the Chief Minister. MCD intensifies demolition drive across Delhi. Action taken against 34 properties, 17 properties sealed. The civic body has also issued 22 show cause notices and 4 demolition orders. NDTV makes a splash and a surprise shine at the Apple event. NDTV app part of the presentation for the tech giant's global showcase. And finally, politics in United States, where the US President Trump offers freebies ahead of the midterm polls. Trump promises $5,000 to every adult American if Republicans win. And on top of the breaking ground, there's breaking news coming in, and this is about the politics over the Shurveer song in Mirzapur film. The song on Maharana Pratap in Mirzapur movie, the singer, BJP Maharana Pratap descendant, slam singer. In fact, the Congress on the Mewar warrior used for the goons. And in fact, in this entire controversy, there is the descendant who is saying that take strict action. BJP leader shoots letter to the film body as well. So that's what we are picking up on this big controversy around the Shurveer film. There's fresh update coming in here on NDTV about Maharana Pratap descendant seeking action against the filmmakers and on this song. Let's listen in to the reaction that we are picking up.
18: Rana Pratap, desh ka gaurav hai. Repriya ne jo gana gaya Shurveer, usme chetak ka varnan kiya, हल्दी घाटी के रण का वर्णन किया. अब हल्दी घाटी के रण का वर्णन आप मिर्जापुर के अंदर हिंसक गैंगवार में करें. एआई का ज़माना है, क्रिएशन का ज़माना है, पर यह कोई आपको अनुमति नहीं देता कि आप ऐसे करैक्टर को ग्लोरीफाई करें महाराणा प्रताप के नाम से, जो फिल्में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करें, जिस जो एक तरह से अनैतिक कामों में लिप्त रहे. ये गुड्डू भैया, ये मुन्ना त्रिपाठी, इस प्रकार के करैक्टर के साथ राणा प्रताप को पीछे दिखाकर मैं समझता हूँ हमारे इतिहास को छोटा करने का काम कर रहे हैं.
16: Alright, there's a huge controversy brewing with the BJP writing to the censor board. They're the descendants of the Maharana Pratap who are upset, who are seeking action against the filmmaker as well. And there are protests that are underway. Harsha Kumari Singh joins us live, senior editor joining us from Rajasthan. Harsha, there've been, you know, these sensitive topics related to Maharana Pratap, the Rajput legacy, etc. Where earlier also we've seen fierce protests, particularly from Rajasthan itself. What is the problem this time around? What are the descendants of the BJP saying? And has the government or the censor board really reacted?
19: Well, you heard Rajendra Rathore. He's a senior BJP leader and he's written to the censor board about it. Also joining is Vishwaraj Singh Mewar. He's the direct descendant of Rana Pratap. He's also a BJP MLA from Rajsamand. In fact, that's the district where the Battle of Haldighati was fought. And Vishwaraj has also tweeted about it. He's tagged the Ministry of Information and Broadcasting. And he said that Bollywood is forever testing the barriers of disgust, as evinced in the picturization of the song Shurveer in the film Mirzapur. Now, like you said, Aditya, the larger context is, of course, the politics of identity. Rajput history, Rajput culture, and the way it's depicted in popular culture, whether it's the silver screen or the small screen. So when there's an politics of identity involved, then the Rajput groups definitely do get involved. Now, in this context, very simply, the song Shurveer describes the Battle of Haldighati, it describes Rana Pratap riding into the Battle of Haldighati in Chetak. In the background, you have a scene from Mirzapur where there's a gang war going on and there are people shooting each other. So obviously, somewhere there's a cultural connection being made in that song and with what happens in Mirzapur. We all know that story. It's about ambition, the underworld, about blood, deaths, revenge, so on and so forth. Now, that's not the cultural context of Maharana Pratap. So obviously, somewhere in Rajasthan, issues like this keep coming up, whether it was the Padmavat controversy or the Jodha Akbar controversy, because, you know, somewhere the cultural identity is very strongly linked to history. And that's the reason why Rajasthan gives this kind of a social reaction, to put it in a context. But having said that, it's a BJP government. The Rajput votes are very, very important. We've seen one BJP leader writing to the censor board. We've seen another BJP leader who's from the Mewar dynasty tweeting about it and tagging the Ministry of Information and Broadcasting. So I think this is an issue that is really going to escalate. There's a social media storm on it, and it's something that's going to pick up. And of course, the singer, he's also gone on record to say that he's absolutely anguished by the way his song has been used.
16: Update. Thank you very much for joining in. Stay with us because we have Raparia Balam, Shurveer song singer, joining us live exclusively here on NDTV. Raparia Balam, bahut bahut dhanyawad hamare sath judne ke liye NDTV par. Aapse ek spasht sawal, aapka video humne dekha ki aapne kaha ki aap legal notice bhej rahe hain XL Entertainment ko aur keh rahe hain ki ye jo gana hai aapka hai aur aap bhi जो हैं बहुत ही क्रोधित हैं, गुस्से में हैं कि जिस तरीके से जो गाने का प्रदर्शन इस फिल्म में किया जा रहा है, कि क्या आपत्ति है आपको, क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपका ये गाना है और किस तरीके से गाने का इस्तेमाल हुआ है, क्या आपत्ति है आपको?
20: जो लीगल सबसे पहले नमस्ते, खमागणी, राम राम आप सभी को. और देखिए, लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है, वो चीज़ें हम एक बार साइड कर देते हैं. और जो मेन जो है, देखिए, ये मेरा विरोध नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का विरोध है. इस तरह से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास हुआ है फिल्म में, वो निंदनीय है. और हमारी जो मुख्य जो हमने जो बात रखी है लगातार, ये भी कहते हैं कि ये इट्स नॉट ए चीप पब्लिसिटी स्टंट कि हम चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं. ये है हमारे अपमान की बात है, राजस्थान के अपमान की बात है. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं. आप ये कैसे कर सकते हैं कि क्या ये जस्टिफिकेशन होगा, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम मंदिर में भजन सुनते हैं और वहाँ पर हम डीजे पे बार सॉन्ग्स चला के नाचें? ये नहीं होगा ना, ये सरासर गलत है. और इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, पूरा भारत इस चीज़ का विरोध कर रहा है. और जिस तरह से आम जन आगे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई है.
16: जी, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? और दूसरा, मैं ये भी स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूँ, अब जब आपने लीगल नोटिस भी भेजा है और आपकी जो आपत्ति है पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर जारी की है, क्या फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई फ़ोन कॉल, कोई चिट्ठी, कोई संपर्क आपसे हुआ, वो क्या कह रहे हैं?
20: जी नहीं, अभी तक हमारे को संपर्क नहीं किया गया है. और अब जो हमारी जो मुख्य बात है, जो आप देख रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह. और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने भी इस चीज़ का विरोध किया है और CBFC को लेटर के द्वारा उनको आगाह भी किया है कि इस तरह से ये चीज़ें हटाई जाएं. जिस तरह से गाने का प्रयोग हुआ है वो दुरुपयोग कहेंगे और वो गाना वहाँ से हटना चाहिए क्योंकि ये सरासर इंसल्ट है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की।
16: जी बिल्कुल, आपकी बात हम जो हैं दर्शकों के सामने रख रहे हैं, ये इंटरव्यू लाइव चल रहा है एनडीटीवी पर, तो जो भी आपको कहना है आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस गाने का अगर थोड़ा इतिहास में हम जाएँ तो आप हमें बताएं, एक तो इसका जैसे प्रायोजन किया गया है फिल्म में उससे बहुत बड़ी आपत्ति और ठेस पहुंची है लोगों को राजस्थान में, लेकिन इस गाने का इतिहास भी क्या आपका है, किस तरीके से आपने इस्तेमाल किया था और क्या फिल्म से पहले कभी फिल्म मेकर्स ने आपको कॉन्टैक्ट किया, कहा कि इस गाने का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं?
20: जी नहीं, इस गाने की लाइसेंसिंग में जो राइट्स जो फिल्म को दिए गए हैं वो मेरी जानकारी मेरी अनुमति के बिना हुए हैं, बिना परमिशन के हुए हैं और मुझसे बिल्कुल भी संपर्क कम्युनिकेशन किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रखा गया, ये मेरी जानकारी के विपरीत हुआ है। और शूरवीर सीरीज़ के दूसरे गाने भी हम अलग अलग वीर योद्धाओं के, भारत के जो वीर योद्धा हैं जिन्होंने त्याग और बलिदान की लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस माटी के लिए, हमने हमेशा, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि हमने हमेशा सिंसियरिटी के साथ अच्छी से अच्छी जो हमारी वीर गाथाएं हैं वो आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहे, ये कहानियाँ ये त्याग की अमर कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहे, भारत का बच्चा बच्चा का आदर्श जो है वो महाराणा प्रताप जी जैसे वीर योद्धा हों, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हों, छत्रपति शिवाजी महाराज को माने, बस यही हमारे प्रयास रहा है और हम ये प्रयास लगातार कर रहे हैं कि कैसे अपने मॉडर्न म्यूज़िक के साथ हम इंटरेस्टिंग बना के जो हमारा जेंजी है उनके बीच हमारा म्यूज़िक हमारा कल्चर लेकर आएँ। और इस चीज़ और जिस तरह से ये गाना यूज़ हुआ है, मैं अगेन वही बात अपनी रखता हूँ कि वो मिसयूज़ हुआ है इस गाने का और ये एक पूरे भारतवर्ष का अपमान है, राजस्थान का अपमान है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का अपमान है।
16: जी बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि जो अपमान है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और तभी ये इंटरव्यू बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने राजेंद्र राठौड़ जी का इंटरव्यू भी किया, उन्होंने जो मीडिया को कहा वो बताया, लेकिन आपका जो हमने वीडियो देखा, मैं दर्शकों के लिए, क्योंकि आप जो हैं इस गाने के लाइसेंस होल्डर हैं, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं, जो आपने वो वीडियो बनाया अपनी ही बोली में, क्या वो थोड़ा बहुत आप रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर एनडीटीवी के दर्शकों के लिए, जिस तरीके से आपने अपनी बोली में वो वीडियो बनाया और बताया अपने अंदाज में, ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुँचे?
20: मेरी बात यही, देखिए गाना 2020 में ज़रूर रिलीज़ हुआ है और वो लोगों का हम सब का गाना है, वो मेरा अकेले का गाना नहीं है, वो हम सब उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, उसको चेरिश कर रहे हैं। आप देखिए कि चाहे कोई भी फंक्शन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, राजस्थान के स्कूल्स में कहीं पर भी कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उस वो गाना हम सब का है, लोगों का है, लेकिन जिस तरह से वो मूवी में पोर्ट्रे किया गया है वो बहुत दुखदाई है।
16: आप क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जाते जाते कुछ बोल उस गाने के, बोल दें हमारे लिए?
20: मैं वार्निंग के साथ जो गाने में भी है, अगर आप गाना सुनेंगे कि नो इट्स नॉट ए गैंगस्टर सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग अबाउट ए वॉरियर, ले हाथ खड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला चेतक संग चल, कूच पड़ा बन शूर वीर वो टूट पड़ा ओ माटी में वाड़ारी सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावण दूंगा आन तेरी, तुझको ये जबान मेरी तुझ पे वारूंगा जान मेरी, बली तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाड़ारी।
16: बहुत ही उमदा, बहुत ही ज़बरदस्त और आपकी आवाज़, आपका गाना देश भर में गूंज रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि ये गाने का असली उद्देश्य आपका क्या था और फिल्म में कैसे दर्शाया गया है। तो आपकी आवाज़ जो है, आपने जो आज कहा है एनडीटीवी पर, वो लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो है रफरिया बालम एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो और आखिरकार जो आपकी आवाज़ है वो देश भर में गूंजे। All right, there's more news that's coming in, and this is in regard to another murder that stuns Tamil Nadu. A shocking police angle emerges in the Chinnai murder case. Hours before his death, Pradeep publicly alleged that a police inspector had threatened his life, warning him of a brutal violence. Pradeep claimed the inspector warned him of serious violence, including breaking his limbs and hacking him to death. The allegations have now triggered a sharp political attack from Udayanidhi Stalin, who demands accountability from the police. Taking direct aim at the government, he asks, do police think Vijay is a dummy? Let's listen in.
4: இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிட்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கு கூப்பிட்டு நீ என்ன வந்து உங்களுக்குள்ள மோட்டிவேஷன் இருக்கு, நீங்கள் மாறி மாறி வெட்டிப்பீங்கன்னு எனக்கு வந்து தகவல் வருது, இது மாதிரி சொல்கிறாங்க போகிறாங்க வரான்னு சொல்லும் போது நான் கேட்டேன், சார் எதனா அதுக்கு ஆதாரம் நான் சொன்னது இருக்கா, நான் பேசின ரெக்கார்டு எதனா இருக்கா, நீங்கள் என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க காட்டுங்க, நான் வந்து இதை வந்து இது பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னும் போது நீ என்ன பெரிய இதுவா சார், உயிரோடு இருந்த நான் பார்த்துடுறேன், நீ வந்து உன் கை காலை உடைச்சிருவேன், உன்னை சுட்டுடுவேன், உன்னை சுட்டு சாவடிச்சிருவேன், உன்னை வெட்டி திருச்செந்தூரில் திரும்ப போய் கரைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டேஷனில் இருக்க இன்ஸ்பெக்டர் வந்து இது மாதிரி சொல்லி என்னை வந்து கொலை மிரட்டல்
21: அட்ராசிட்டிஸ் அண்ட் வி கேனாட் டெஃபினெட்லி டைஜஸ்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த்ரீ டேஸ் வி சா இன் பெசன்ட் நகர் தட் ஒன் பர்சன் வாஸ் மர்டர்ட் ப்ரூட்டலி அண்ட் வித்இன் டூ டேஸ் திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் திருவத்தூர் வேர் தட் பர்சன் ஹஸ் கிவன் அ கம்ப்ளைண்ட் in the police station stating that the inspector is trying to murder him. So the very next day he has been murdered. And the chief minister in assembly says that the murder should not be seen as a law and order problem because they are not personal. See, the duty of the police is to stop crimes from happening. And Mr. Vijay, though acted in several movies as a police official, he has to watch his own dialogues, what he has said. And as the chief minister, he says that this is not a law and order problem, is really shocking. So the absolutely the government is unable to maintain law and order. This is what is happening.
16: Well, it's a shocking case coming in from Chennai. A man has been hacked to death, and there are some very significant questions that have been raised on the police threat angle as well. Joining us live to get us more details is Sam Daniel of NDTV from Chennai. Sam, what else are you picking up? There's a political row over this latest development, but it's also a humanity story of a man hacked to death, but serious questions on the police as well.
22: That's right. In that unverified video, Aditya, the man alleges that the police inspector where he had given a complaint had summoned him and threatened his life. And the day after, this man was hacked to death. So that's the big question. And already this has become a political issue, but the leader of opposition, Udayanidhi Stalin, questioning law and order and has sought action against the inspector and all those responsible for this death in this particular case. This comes amid the opposition turning the heat on the ruling TVK on questions of declining law and order, as they call it, rising crime and murders. And on the floor of the House recently, the chief minister argued that this rise in crime is due to what he calls unchecked abuse of drugs during the earlier DMK regime, and that his government would ultimately fix this. The larger question as far as this particular case is concerned, police say this began as a tussle between two women. A woman who had lent 9 lakh rupees to another woman, and when there was some delay in repayment, when there was a dispute over that, the borrowers, she actually attempted suicide, after which the enraged borrower's son had hacked to death the lady who took this money, her son. It's in this case, now it has become a political tussle. The big question, was there any complicity by the police in this? And did the police fail to act on time? The police, of course, deny these allegations, saying that the inspector had summoned only to warn both sides. Neither was there any threat by the family shade, nor did the police inspector threaten this man's life. It's at this stage this has become a political issue, and now we'll have to wait and watch for further investigation, whether the government would take action against the police or would they defend them after investigation.
16: In any case, the government will have to answer, and there are some very uncomfortable questions that are still lying in the air. Thank you very much, Sam, for joining us. And NDTV, we will be tracking this story very, very closely. And now, the political war of words in Tamil Nadu is getting personal. DMK chief MK Stalin has hit back at Chief Minister Vijay after Vijay's remarks and jaw gesture in the assembly triggered a sharp response. Stalin did not just defend the DMK's history, he made it personal, recalling his own arrest and alleged custodial torture during the emergency, including the breaking of his jaw. But Stalin's counterattack went beyond the emergency. He hit back at Vijay's corruption allegations, challenging

0: And over the last 1 week, this has been a true big story. There are questions being raised, and now it is the day two of the demolition drive across Delhi. MCD intensifies its crackdown on the illegal construction and dangerous buildings all across the city. The city body carries out demolition action against 34 properties and seals 17 others across all 12 zones of Delhi. The MCD, which is the Municipal Corporation of Delhi, has issued 22 show cause notices and passed 4 demolition orders. The enforcement drive targets buildings found violating Delhi's master plan and building bylaws, with authorities stopping by for action against structurally unsafe properties across the capital. The probe intensifies with owner's son Mahesh, labor contractor Sanoj, and PG operator Sudhanshu sent to 2-day police custody. The investigators say a ground floor wall was removed for a shop, potentially weakening the structure. 3 truckloads of debris were also dumped in the basement. The Supreme Court is also hearing the matter today, including a plea seeking safety audits of the private hostels and the PGs, along with possible Ban India safety measures.
1: It's day two of MCD and Delhi government's crackdown on illegal, unauthorized structures across the national capital. Right now, we're present here in Delhi's Lakshmi Nagar's D block. An entire 5-story building has been declared unauthorized by MCD officials and is being demolished. The entire 5-story building will get demolished. The owners, the family of the owner, is saying that even though this was sealed, they're saying that it was the builders, with the builder here to whom the owner had given this entire space. He's at fault here and not the owner and the family. You can see in the visuals behind me, police officials are overseeing this demolition process. This is in D block of Lakshmi Nagar. This is another spot. Yesterday, another demolition had taken place in Lakshmi Nagar's F block. This is D block. The entire five-story building will get demolished. It is being carried out in a phased manner. As of now, they started with the first and the second floor.
0: And staying with this story, the Satya Niketan disaster has led to a lot of lives being lost, but a lot of people have been injured as well. And now NDTV brings you an exclusive interview with Nitish Chib, a survivor of the Satya Niketan building collapse, who was discharged from the AIIMS Trauma Center in New Delhi. And our colleague and reporter Soumya brings us this big exclusive.
2: नितेश जी, जब ये इंसिडेंट हुआ था वो लास्ट मोमेंट, आई नो कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था वो सिचुएशन, उसको याद भी करना बार बार, बट वो लास्ट के कुछ मोमेंट्स आप अगर बता सको कि क्या आपने उस टाइम पे नोटिस किया, कि आप लोगों को रियलाइज हुआ, अगर आप वो कुछ शेयर कर सको तो.
3: मैम, सुबह खाना खा के बस बैठे ही थे रूम में, तो बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर गई, तो नीचे दबे रह गए 1.5 घंटा तक.
2: आपको हेल्प कितने देर में मिली और किसने हेल्प किया, आप कैसे निकल पाए वहां से?
3: 1.5 घंटे के बाद सीनियर्स ने बताया टीम को कि यहाँ पे हमारे बच्चे फंसे हैं, फिर उन्होंने हमें रेस्क्यू करना शुरू किया था.
2: आप में से किसी ने क्या, मतलब आप लोग के पास अगर फोन था, आप लोग में से किसी ने किसी को रीच आउट किया था कि आप यहाँ पे हो, स्टक हो?
3: मेरे दोस्त ने लोकेशन भेजी थी, फोन भी किए थे कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, फिर उन्होंने आगे टीम को बता के हमें निकाला वहां से.
2: जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपको कब तक, क्या आप अपने सेंसेस में थे जब आपको हॉस्पिटल ले गया गया, वहां से आपका पूरा जो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाओ तो.
3: हम जब लेके गए हॉस्पिटल तब तो काफी ऐसे ही था, बॉडी पूरी सुन पड़ी थी, ना काम कर रही थी ना कुछ, सिर से ब्लड निकल रहा था काफी. तो थोड़ी देर के बाद होश आई तब ठीक था, मैं गुड फील कर रहा था.
2: नितेश जी, इस पीजी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने आपका अग्रीमेंट भी पढ़ा था कि उसमें ये लिखा गया था कि कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें पीजी ओनर जिम्मेदार नहीं है. वहां पे जो भी इलीगली चल रहा था, क्या आप लोग कभी भी इस चीज को ओनर से कंप्लेन किए या ये इश्यूज रेज किया आपने कि वो बच्चे भरे जा रहे थे वहां पर और वो बिल्डिंग काफी वीक हो चुकी थी, तो ये सब कभी आप लोग ने रेज कर पाए ओनर से?
3: मैम, हमें पता ही नहीं लगा कि बिल्डिंग गिर जाएगी या इस सिचुएशन में आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग बाहर से तो पूरी ठीक ही लग रही थी, अंदर का इतना पता ही नहीं था कि कितने वाली है।

0: What will an actor do? He has to show some scenes, acting scenes in the house. That is what he doesn't, still I think he doesn't feel that he is a chief minister, a responsible chief minister, who has a responsibility to take care of the citizens of Tamil Nadu who had voted him for power, to power. He should think of the people of Tamil Nadu. He never does do all those things. His only work so far is to attack DMK. He thinks that I am elected as the chief minister to attack DMK. Funny man.
1: And shifting focus to Punjab, there's breaking news coming in. This is in regard to the claims that were made just before his death, Gulzar death case. Son's big claim on NDTV. Father cremated forcibly. That's the big claim that's come in on this big story from Punjab. Remember, there were serious allegations that were coming in that video before Gulzar's death. And the son is now claiming that the body has been forcibly cremated. Was the law abided by? Were the SOPs really abided by? These are significant questions that we're asking here on NDTV. But now the son is claiming that the body was cremated forcibly. We know usually under such political circumstances and political controversies, when there is death involved, there is something like a forcible cremation that often happens. It hasn't happened for the first time. It has happened in several such cases in the past as well. And of course, this remains a top focus. We are trying to get our reporter on this big story. But in this particular case, the son is now claiming that the entire cremation took place by force, not with the consent of the family members. That's the latest that's come in on the Gulzar story. Remember, there was questions being asked to the Aam Aadmi Party, Bhagwant Mann government. In fact, the Akali Dal, the BJP and the Congress had leveled serious allegations against Chief Minister and his Minister Cheema as well. Gurpreet is joining us on this big story live on NDTV. Gurpreet, these are some very stinging allegations by the son of Gulzar, who is saying that the body was cremated forcibly. Any justification by the Aam Aadmi Party government so far?
2: Well, yes, serious allegations have been leveled against the state government. They say forcefully cremation was being proceeded by the local administration, and even they were not able to get the last time to do customary rituals. Now it has been seen, it has become one of the major political issues in the state of Punjab. We have seen all the opposition party, they have been demanding there should be CBI investigation, because name of the Punjab finance minister has been mentioned in this video recording, and specifically that was considered as a dying declaration, a statement of Gulzar Singh. It has been seen the family has already leveled serious allegation against the local administration as well as the Punjab government. No reaction has come from the state government on these allegations, but opposition parties, they have been demanding immediate investigation from the CBI, because it's a very serious matter in nature, and Gulzar Singh was raising issue related to prevailing drug menace in the state of Punjab. That time he was being humiliated, he was being pressurized by the local people, and that turned out to be one of the main reasons why he had committed suicide. So let's see that how the state government is going to react on these allegations which have been leveled by the family members, and a lot of video which has already been put on X by the opposition leaders, where we have seen that huge force had been deployed when the cremation ceremony of Gulzar Singh was going on in Sangrur. So let's see that how the state government is going to react on these allegations which have been leveled by the family members against the state government and local administration, that they did not allow even to hold customary rituals before the cremation, and it was done forcefully by the police department and the local administration.
1: All right, Gurpreet, getting us the latest on this big story. These are serious allegations by Gulzar Singh's son against the state government of a forceful cremation, and this is what Gulzar Singh's son had to say.
3: ਲਖਵਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ
4: ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨੀ ਦੇਖਣ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨੀ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਕੀ।
1: From Punjab, shifting our focus towards Rajasthan, a controversy has erupted over the use of the song Shurveer in Mirzapur, the movie. The song, written in praise of Maharana Pratap's valor and his legendary heroic and horse Chetak, has been in fact in controversy. And now the background score for an action-packed gang war sequence in the film's opening has been used. The sequence has drawn sharp criticism from the Rajput groups and Maharana Pratap's descendants. In fact, Vishwaraj Singh Mewar has called for strict action, saying that the song cannot be used alongside violent crime scenes. BJP leader Rajendra Rathod has also written to the Censor Board of Film Certification, alleging an attempt to diminish the history. Meanwhile, singer and composer Raparia Balam spoke to NDTV and he says that he is anguished by the song's use and claims it was used without his permission or consent. He says legal notice have been issued to the filmmakers and the record company as well.
5: Rana Pratap desh ka gaurav hai. Raparia ne jo gana gaya Surveer, usme chetak ka varnan kiya, haldi ghati ke ran ka varnan kiya. अब हल्दी घाटी के रण का वर्णन आप मिर्जापुर के अंदर हिंसक गैंगवार में करें, एआई का ज़माना है, क्रिएशन का ज़माना है, पर यह कोई आपको अनुमति नहीं देता कि आप ऐसे करैक्टर को ग्लोरीफाई करें महाराणा प्रताप के नाम से, जो फिल्में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करें, जिस जो एक तरह से अनैतिक कामों में लिप्त रहे, ये गुड्डू भैया, ये मुन्ना त्रिपाठी, इस प्रकार के करैक्टर के साथ राणा प्रताप को पीछे दिखाकर मैं समझता हूं हमारे इतिहास को छोटा करने का काम कर रहे हैं।
1: अपरिया बालम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एनडीटीवी पर। आपसे एक स्पष्ट सवाल, आपका वीडियो हमने देखा कि आपने कहा कि आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं एक्सेल एंटरटेनमेंट को और कह रहे हैं कि ये जो गाना है आपका है, और आप भी जो हैं बहुत ही क्रोधित हैं, गुस्से में हैं कि जिस तरीके से जो गाने का प्रदर्शन इस फिल्म में किया जा रहा है, कि क्या आपत्ति है आपको, क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपका ये गाना है और किस तरीके से गाने का इस्तेमाल हुआ है, क्या आपत्ति है आपको?
6: जो लीगल सबसे पहले नमस्ते, खमागणी राम राम आप सभी को। और देखिए, लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है, वो चीज़ें हम एक बार साइड कर देते हैं। और जो मेन जो है, देखिए, ये मेरा विरोध नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का विरोध है। इस तरह से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास हुआ है फिल्म में, वो निंदनीय है। और हमारी जो मुख्य जो हमने जो बात रखी है लगातार, ये भी कहते हैं कि ये इट्स नॉट ए चीप पब्लिसिटी स्टंट कि हम चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये है हमारे अपमान की बात है, राजस्थान के अपमान की बात है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं कि क्या ये जस्टिफिकेशन होगा, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम मंदिर में भजन सुनते हैं और वहाँ पर हम डीजे पे बार सॉन्ग्स चला के नाचें? ये नहीं होगा ना, ये सरासर गलत है। और इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, पूरा भारत इस चीज़ का विरोध कर रहा है। और जिस तरह से आम जन आगे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई है
1: जी। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? और दूसरा, मैं ये भी स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूँ, आप जब आपने लीगल नोटिस भी भेजा है और आपकी जो आपत्ति है पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर जारी की है, क्या फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई फ़ोन कॉल, कोई चिट्ठी, कोई संपर्क आपसे हुआ, वो क्या कह रहे हैं?
6: जी नहीं, अभी तक हमारे को संपर्क नहीं किया गया है। और अब जो हमारी जो मुख्य बात है, जो आप देख रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह, और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने भी इस चीज़ का विरोध किया है और CBFC को लेटर के द्वारा उनको आगाह भी किया है कि इस तरह से ये चीज़ें हटाई जाएँ। जिस तरह से गाने का प्रयोग हुआ है वो दुरुपयोग कहेंगे, और वो गाना वहाँ से हटना चाहिए क्योंकि ये सरासर इंसल्ट है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की।
1: And this is big NDTV campaign, Save the Babies. Over the last 2 days, it's been an outrage all across the country. The 5 orangutans who were rescued from the Bichitrapur forest in Odisha continue their stay at a zoo in Bhubaneswar. The orangutans underwent a vet examination and doctors said that all 5 are healthy. The state forest and environment minister said that the joint probe by the special task force and the wildlife control bureau would look into how the animals came to Balasore, who brought them there and to the forest, and who was involved in such activities. Meanwhile, the CCTV footage obtained from the area shows the vehicle passing through at around 11:25 p.m. and returning 15 minutes later. The footage is now being examined as part of the investigation into how the orangutans reached the forest. In fact, meanwhile, the Odisha Forest Minister, Ganesh Ram Singh Kutania, has spoken exclusively to NDTV on the latest developments. Let's listen.
7: Mr. Ganesh Ram Singh Kutania, the Forest and Environment Minister of Odisha. Sir, welcome to NDTV. Sir, Mangalwar ko rescue kiya gaya Forest Department ki taraf se, aur unko fir Nandankanan Zoo ko shift kiya gaya. Sir, abhi kaisa care liya ja raha hai unka, aur kya kya special bandobast hua hai?
8: देखिए, शिफ्टेड होने के बाद हम लोग ये नंदनकानन क्वारंटाइन में सब 5 जो थे हम लोग का उरांग उटन बेबिन को क्वारंटाइन में रखा गया है। उसके बाद हम लोग अभी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग का डिपार्टमेंट का डॉक्टर लोग लगे हुए हैं। कल भी बोला हर न्यूज को, मैं बोला ऑलरेडी, तो ये बहुत छोटे हैं, 1 ईयर का आसपास होंगे, इसलिए थोड़ा बहुत केयर ज़्यादातर लेना पड़ता है, अभी ले रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है ना, उसके साथ भी हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं। हम लोग का PCCA पे ऑलरेडी कम्युनिकेटेड किए हैं नेशनल जू अथॉरिटी को, इतना उरांग उटन पे भी रिस्क्यू किए बोल के। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका तबीयत भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था, अभी डॉक्टर बोला ठीक है बोल के, तो आने वाला सीजन में उनको थोड़ा बहुत आहुर अधिक से अधिक क्या लेना पड़ेगा, कहीं ना बेबी है, अभी दूध पिला रहे हैं डिपार्टमेंट, मेरे हिसाब से 1 साल से अधिक इनको दूध तो ही देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं। तो अभी जहाँ तक कहाँ से आया, कौन लाया, इसके बारे में अगर बातचीत करेंगे, निश्चित रूप से ये हम लोग का ये इंडिया के स्पेसिस के उड़ीसा के स्पेसिस तो है ही नहीं, तो निश्चित रूप से ये लोग कहाँ से आए हैं इसके बारे में हम लोग का
7: डोमेस्टिक। सबसे बड़ा सवाल वही सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस है कि कैसे बालेश्वर पहुँचा, क्या एक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क काम कर रहा है, या सर ऐसे क्या क्या आपको क्या लग रहा है, आपका इन्वेस्टिगेशन में क्या अभी तक सामने आया?
8: देखिए, अभी तो हम लोग क्लियरली बोल नहीं सकते हैं, अभी इंक्वायरी चल रहा है, WCCB इंक्वायरी कर रहा है, इसके साथ हम लोग का पुलिस डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं। और आपका जो बालेश्वर के जो आपका एयरपोर्ट है, उसके साथ रेलवे है, मेराइन वे है, रोड ट्रांसपोर्ट है, और लोकल लोगों के साथ बातचीत चल रहा है, कैसे हैं, कौन लेके आया, ये स्पेसिस हम लोग का इंडिया में नहीं मिलते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डाउट है, जरूर बाहर से आए होंगे बोल के। तो ये स्पेसिस आप जानते होंगे, रेन फॉरेस्ट कंट्री है जो आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्निया, चाइना में मिलते हैं। तो अभी ये हम लोग के लिए अनन्य स्पेसिस है, और अभी ओडिशा गवर्नमेंट का क्लोजली मॉनिटरिंग कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी फॉरेन टूर में आने के बाद हम लोग पूरा तदंत को और बढ़ा देंगे, जिससे हम लोग का यही कि स्पेसिस बाहर ना जाए, इसलिए हर डिपार्टमेंट को भी हम लोग को रिक्वेस्ट किए हैं, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट और कोस्ट गार्ड को भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, कैसे अधिक से अधिक निगरानी किया जाए, जैसे हम लोग का उड़ीसा के वाइल्ड एनिमल वाइल्ड स्पेसिस बाहर ना जाए।
1: मीनवाइल उड़ीसा स्पेशल टास्क फोर्स इंस्पेक्टर जनरल हिमांशु लाल स्पीक्स एक्सक्लूसिवली टू एनडीटीवी अबाउट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द फाइव बेबी ऑर्गथन फाउंड अबैंडन्ड इन अ फॉरेस्ट इन उड़ीसा। ही सेज दैट द स्पेशल टास्क फोर्स इज वर्किंग टू आइडेंटिफाई द सोर्स डेस्टिनेशन एंड द पॉसिबल इंटरस्टेट और इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क बिहाइंड द एनिमल्स। द एसटीएफ इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग वेदर मोर ऑर्गथन्स कुड बी प्रेजेंट इन द एरिया। लेट्स लिसन इन टू दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन।
9: Joining me live tonight on NDTV is Himanshu Lal. He's IGP of the Special Task Force that is investigating the potential trafficking of these orangutan babies that were found abandoned in a forest in Odisha yesterday. Himanshu ji, welcome. Thank you for speaking to NDTV. My first question to you, sir, can you tell us what the condition of the baby orangutans is? We did see pictures from the institute where they are being cared for and taken care of right now. What is their condition right now, according to your information?
10: Their condition is good. They are in Nandankanan Zoo and they are well taken care of.
9: Where does the investigation go now, sir? Because obviously these baby orangutans are, are native of islands thousands of kilometers away. I think it is pretty clear that they have been trafficked. Anything you are picking up on how they got there?
10: See, we are working on the investigation. STF has taken the case and we are working that how they have come here, and we will try to get the whole network busted, and we will try to know the who are the interstate gangs or whatever international network, whatever is there, we will work upon that and we will bust the whole network as soon as possible.
9: Any, I understand that this is an investigation in progress and you cannot reveal too much also, sir. I appreciate that. But my question to you is, anything you can share with us about where these orangutans were being taken? Because it seems like they were abandoned just before the people carrying them were to be caught. Is that assessment correct?
10: This was on some highway route, and we are investigating that how they have come there. And we are trying to know the source also, and where they were planned to be transported. We are working upon both angles, and we will work upon both vertical integration and how they were planned to be transported. Everything we will we'll try to know in the course of time, but we will bust the whole network. That is our target.
9: But you are here because the reason we are asking you this, sir, because the entire nation has been watching this story, itna viral ho gaya hai. That's why they are looking for some confidence and some reassurance from people like you that justice will be done for these, five beautiful animals that have come from a faraway land. They are very vulnerable right now, and people want to know that justice will be served, sir.
10: See, Odisha STF, we have got our own wildlife unit, and we are well versed in investigating these kinds of cases. Earlier also, we have busted the whole penguin pangolin network way back. So we are doing regularly busting these kinds of networks. So we are very sure that we'll bust this network also, and we'll give justice to whatever injustice has happened. And we are confident. We have got the best team, and we'll do that. Thank you.
9: Can you explain to us, last question, Mr. Lal, that Odisha is a state with a very rich biodiversity and wildlife of its own. Why is it that so much animal trafficking cases come up in Odisha? We've seen many cases, like you said, of pangolins, of exotic snakes and lizards, turtles also. Now we're seeing orangutans. Why Odisha specifically, sir?
10: See, this is not specifically linked to Odisha. This is the route where whatever the traditional route, where we can say that from northeast, this they come to Bengal to Odisha and to some other place. Yeah. So Odisha is the route on the things that happened. So you cannot blame Odisha for anything. That was, but we are expert in investigating the cases. We bust the network. That is our asset. So we are busting the network. That is our greatest achievement. Odisha is neither source for that, or neither Odisha is the consumer for that. But despite that, we are busting the whole network.
1: The investigations of the orangutans in Odisha will remain our top focus. But coming up next on NDTV's Breaking Ground, BRICS in Delhi. Prime Minister Narendra Modi all set to host the leaders of the expanded grouping. More details after this short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: गोल्ड रश ऑन द फील्ड,
5: इंडियास चैंपियंस आर रेडी।
4: द बैटल्स एंड द ब्रेकथ्रूज फ्रॉम द अरीना टू द पोडियम।
5: एशियन गेम्स 2026,
4: गो फॉर ग्लोरी ओनली ऑन NDTV।
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: अ वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल एट NDTV अनवीक्षा।
8: नेपलीज वुमेन आर इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योर्स एंड आई कैन सी लॉट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हियर माय फ्रेंड्स।
9: ग्रीन एनर्जी इज द टॉक ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड नाउ, एंड दिस इज द राइट टाइम वेयर वी सी आवर पार्टनरशिप कैन बी largely scalable.
10: And during this visit of the Prime Ministers, I think narrative should go that Nepal is a good place for investment.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swade.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: कर गई ऑन द स्पॉट, पता ही नहीं लगा थोड़ा भी।
1: उससे पहले मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब एकदम कोलैप्स हुआ? आप लोगों को उससे पहले नहीं लग रहा था कि बिल्डिंग अनसेफ है, या आपको बताया नहीं गया था कि बिल्डिंग में काम चल रहा है या बिल्डिंग अनसेफ है?
0: नो नो सर, काम तो पता था चल रहा है, बट ये नहीं पता था कि कितना ज़्यादा चल रहा है। हमें लगा थोड़ा चल रहा है, बट ना उससे पहले कुछ पता चला। जब हमने लंच किया उसके बाद ऑन द स्पॉट ही बिल्डिंग कोलैप्स कर गई बिल्कुल।
1: आप कितनी देर तक वहाँ पर फंसे रहे, और आपने एक वीडियो भी वहाँ से भेजा था, आपने किसको पहले वो वीडियो भेजा, कितनी देर तक आप फंसे रहे रेस्क्यू होने से पहले?
0: सर 1 घंटे तक मुझे लग रहा हम अंदर ही फंसे थे, बट वो जो वीडियो है वो आदित्य कुमार ने भेजी थी
1: जी,
0: सॉरी बट वो वीडियो मैंने नहीं भेजी थी
1: जी। तो जब जब ये जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई और उसके बाद आप वहाँ पर फंसे हुए थे, रेस्क्यू से पहले उस वक्त वो बहुत मुश्किल वक्त आपके लिए रहा होगा, क्या आपके मन पे गुजर रही थी, क्या आप उसमें, क्योंकि आप कह रहे थे आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे, वो मंजर जो है वो शायद हम लोगों के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल होगा।
0: सर उस टाइम मेरे साथ जो रूममेट था उसी ने कॉल्स की, अपने सीनियर्स को पूरी लोकेशन भेज के बताई थी कि हम इस साइड पे फंसे हुए हैं मलबे में। देन आके सीनियर्स ने मुझे लोकेशन पे ढूंढा हम दोनों को, फिर उन्होंने हमें रेस्क्यू टीम के साथ बाहर निकाला।
1: जब आपको रेस्क्यू किया गया तो आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने आपको रेस्क्यू किया वहाँ पर, क्या जो बाकी रेस्क्यू टीम्स थी वो पहुँच चुकी थी तब तक?
0: सर सीनियर्स ने रेस्क्यू टीम को बताया कि हम इस लोकेशन पे हैं, फिर रेस्क्यू टीम ने आके हमें रेस्क्यू किया था NDRF ने।
1: नीतीश आपको चोटें भी लगी इसमें, कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है और अभी आपका क्या हाल है?
0: सर मेरे लेफ्ट शोल्डर पे हैं चोटें और लेफ्ट लेग पे, और सिर पे स्टिचेस आए हैं।
1: जब आप आपके ही वहाँ पर जो दोस्त थे और साथी थे, आपने देखा 5 लोगों की उसमें मौत भी हुई, जब आप उनके बारे में सोचते हैं, आप लकी रहे कि आप इसमें बच गए, आप उन्हें कैसे याद करते हैं नीतीश अब?
0: सर उसमें कुछ ऐसे भी थे जो हमारे जूनियर्स थे, कुछ हमारे साथ के थे, बड़ा दुख लगा सुन के कि उनकी डेथ हुई, बट बड़ा ही दुखद बहुत था एक हमारे लिए पल जब मुझे ये पता लगा हॉस्पिटल में कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई है जो फर्स्ट ईयर के थे जो अभी आए थे।
1: नीतीश हमारे साथ बने रहिएगा। नीतीश सोनी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से MCD यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगातार बात हो रही है कि देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम तोड़ रहे हैं, बाकी बिल्डिंग्स को भी तोड़ा जा रहा है, आपको लगता है ये सब पहले होना चाहिए था, आपका भाई बच जाता अगर पहले से इतनी तत्परता दिखाती ये एजेंसीज?
2: सर पहले तो उसमें जो भी है वो लापरवाही है पूरा पूरा। अगर आपको बिल्डिंग तोड़ना ही था तो पहले उस फ्लैट को खाली करा लेना था।
1: ये सब जो कार्रवाई वो अब कर रहे हैं ये सब उन्हें पहले करनी चाहिए थी?
2: जी जी जी।
1: आपके भाई युवराज जी
2: जी
1: आप कुछ कह रहे थे बोलिए।
2: जी जी नहीं आप बताइए ना, आप बताइए।
1: मैं ये कहना पूछ रहा था आपसे, आपके भाई युवराज इस हादसे में अब नहीं रहे, युवराज के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? वो CA बनने का उनका सपना था, यहाँ से गए थे, और आप लोगों को कैसे पता चला कि ये पूरा हादसा हुआ है?
2: मैं तो सर बेरला में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ विमित्र जिले में
1: जी।
2: वहां से मेरे मामी को फोन आया मेरे पास कि मैं दुकान अपने मेडिकल शॉप में था, मेरे को फोन आया कि जो बिल्डिंग गिरा हुआ है, हादसा हुआ है दिल्ली में, उसमें तेरा छोटा भाई भी है, तो पता करो उसमें क्या है कैसा है। वो एकदम हड़बड़ा गए, वो रोते होते फोन किए मेरे को।
1: तो आपने उसके
2: एकदम हड़बड़ा गया, बातचीत किया वहां लगातार, तो लगभग शाम को 6:30-7 बजे तक तो मेरे कंफर्म हो गया था कि वो नहीं रहा।
1: आपने उसके फोन पर भी फोन मिलाया होगा, युवराज के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे?
2: सर जी नहीं नहीं, मैं उनको बहुत फोन मिलाया, परिवार वाले लोग भी लगाए, लेकिन वो उनका कोई फोन मतलब अटेंड नहीं किए।
1: इतनी यंग एज के थे युवराज, क्या सपने थे, क्या करने आए थे उसके बारे में, युवराज के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे?
2: पहले तो सर मेरा उनसे एक मैं उन मतलब वो मेरे मतलब उनके बुआ का मैं बेटा हूँ। पहले तो मेरे लिए ये दुख का विषय है कि वो लव में मतलब जो वो बचपन से मेरे वैसे ही बोलते थे, जब भी मैं उनसे मिलता था कि भैया आप एमएलए बनोगे और मैं अधिकारी बनूंगा।

0: आप मेरे बनाओगे करके। मैं पॉलिटिशियन हूँ, बीजेपी से वो हूँ, बिलोंग हूँ, तो मेरे हमेशा बोलते थे वो। तो काफी मेरे लिए दुखद का विषय है कि मैं बनू ना बनू, लेकिन मेरा भाई तो नहीं रहा।
1: सरकार का जिस तरीके से इस पे पूरा रवैया रहा है, एमसीडी का रवैया रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि लापरवाही
0: नहीं नहीं
1: हुई,
0: नहीं सर,
1: सबको पहले आपको पता होना चाहिए था कि
0: सरकार
1: इस तरीके।
0: इसमें कोई जी
1: जी
0: सरकार का इसमें कुछ भी नहीं है सर। सरकार कहीं कोई सहयोग नहीं करता। वहां हम पहुंचे, वहां हम अपने स्थिति में पहुंचे, वहां वहां हमको सिर्फ यही सहयोग मिला कि हम वहां से डेड बॉडी लेके एम्बुलेंस में आए हैं, तो उस एम्बुलेंस का खर्चा वो दे दिए, बस और कुछ भी नहीं।
1: और जो अब कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि अगर ये कार्रवाई इस तरीके की पहले होती, करप्शन इस तरह का ना होता, एमसीडी अगर इस तरह की बिल्डिंग को ना बनने देती, तो आपका भाई आज जीवित होता?
0: जी सर बिल्कुल, ये पूरी पूरी लापरवाही है सर।
1: जो एक्शन हुआ है
0: हम
1: उससे
0: तो चाहते
1: संतुष्ट
0: हैं
1: हैं
0: उसमें
1: आप?
0: कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
1: जो अभी तक का एक्शन हुआ है उससे संतुष्ट हैं आप?
0: नहीं नहीं सर, हम तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग में भी एक FIR करेंगे। अभी हमारा समय विपरीत है, हम दुख के दुख में हैं। जैसे ही हमारे घर का कार्यक्रम होगा, हम दुर्ग में भी एक FIR करेंगे उनके नाम से।
1: नीतीश छिब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पेरेंट्स जब आपसे मिले होंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा रहा, सबने देखा, तो आप बताएंगे कि क्या आपके परिवार से कौन सबसे पहले आपसे मिलने आया, और उनके लिए बहुत राहत की बात होगी कि इस बड़े हादसे में आपकी जान बच गई?
2: जी सर, सबसे पहले मेरे मदर्स और मेरी मदर, ब्रदर्स और सिस्टर आए थे मेरे से मिलने। तो वो काफ़ी परेशान थे जब आए, तो फिर मैं उनसे मिला जब, तो उनको थोड़ा सा ठीक लगा।
1: अब आप वापस जाएंगे पढ़ने के लिए, आपको क्या दिल्ली वापस आएंगे? डर सता रहा है कि वहां पर आएंगे तो कहाँ रहेंगे?
2: जी सर, डर तो है, बट ये है कि अभी थोड़ा 1 महीने तक रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वापस आना है नहीं। सरकार को थोड़ा सहयोग करना चाहिए, बिल्डिंग्स चेक करनी चाहिए, वेरीफाई करें कौन सी पुरानी है, कौन सी कब से खुली हुई है, थोड़ा इससे बच्चों को बचाव हो जाएगा।
1: आपके कॉलेज से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है?
2: जी सर, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी नीड हो, तो आप सीधे हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
1: आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू नो, बोथ ऑफ देम हैव अ सिमिलर नेम, ऑफ कोर्स वन हु हैज लॉस्ट हिज ब्रदर, द अदर वन हु इन फैक्ट इज थैंकफुल टू बी अलाइव। ही वॉज इन दैट वेरी बिल्डिंग दैट कोलैप्स एट सत्यनिकेतन, सर्वाइव दैट हॉरर बाय अ विस्कर। हिज फ्रेंड्स एंड हिम वर एबल टू सेंड अ लोकेशन एंड दे वर रेस्क्यूड ऑलमोस्ट आफ्टर एन आवर। But the question keeps coming back to the same thing. Is it just an eyewash? Because this keeps happening in the national capital, ladies and gentlemen. All this demolition, all these drives lead to nothing but more corruption. Would this be the final, in fact, warning that nothing of this nature should ever happen in Delhi again? At least that's the hope that many people have. Thank you so much, gentlemen, for speaking to me. All right, ladies and gentlemen, let's move up now to the political story of the day. In fact, a new shake-up, or let me say a shake-up once again in the once very powerful BSP of Uttar Pradesh. Big shake-up in BSP with Mayawati now cutting ties with her nephew Akash Anand once again. The BSP chief says Akash put personal and family interests ahead of party and the movement, even prioritizing his father-in-law Ashok Siddharth's political career over his own. Mayawati also hit out at Akash for not reposting BSP post, calling him double-minded about the party's growth. This comes after Siddharth announced his father-in-law announced his retirement, as Mayawati wanted it earlier, from politics, a move Mayawati called too late. Akash, once projected as Mayawati's successor, heir apparent, has now been completely sidelined and completely, you know, mere thrown out of the BSP after a series of removals and, of course, reinstatements over the past 2 years. A flip-flop that has continued as far as the BSP is concerned. This also comes at a time when the elections of Uttar Pradesh are at this moment, in fact, staring the all political parties. They are preparing for those elections. BSP, which used to be a mighty force in Uttar Pradesh in 2007, Mayawati came with a thumping majority, and that was the last time BSP saw, you know, some sort of a silver lining as far as its fortunes are concerned in the state of Uttar Pradesh. Since then, the story has just been of the internal feuds and a declining power of the BSP.
3: मैं फिर से उनसे कहूंगा कि आए अंबेडकर और कांशीराम के सपने अधूरे, हम सब लोग मिलकर करेंगे पूरे, और उनको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कोई मिशनरी आदमी कभी संन्यास नहीं लेता, वो अपने उपेक्षित समुदाय जो 5000 वर्ष से सदियों से सताए गए लोग हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई, 80 करोड़ जो अनाज पर निर्भर है, ऐसे लोगों को विकास की धारा मिला, आए और निर्बलों को खड़ा करके दिखाएं, क्योंकि ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी निर्बलों की पार्टी नहीं है, कांशीराम के मिशन की पार्टी है, इसलिए जो भी कांशीराम अंबेडकर के मिशन वाले हैं, वो सब आए और एक साथ मिलकर ऐसी ताकतें जो आज के दिन में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट जिस तरीके से भ्रम पैदा किया जाता है, इसको खत्म करके दे।
4: बहुजन सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है, इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। अब आकाश आनंद से इनको इतनी परेशानी है तो 3 बार उसको निकाल चुकी है और 3 बार पार्टी में वापस ले चुकी है। आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए, फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा।
1: Let me tell you why Akash Anand and why we are talking about him. Who is he and why it is important? Because the state elections of Uttar Pradesh are important. And at one point of time, the BSP had a total dominance as far as the very mighty SC vote, especially the Jatav community in the SCs is concerned in the state of Uttar Pradesh, which has been continuously dwindling or moving away from Mayawati and the BSP. So who is Akash Anand? He is Mayawati's nephew, was always seen as the heir apparent of the party, son of her young brother Anand Kumar. He is in fact an MBA from University of Plymouth in London. He in fact entered active politics in 2016. BSP star campaigner in 2019 Lok Sabha election. Some very fiery speech by Akash Anand gained traction. Then very quickly, he also in fact got into trouble. He is married to daughter of ex-BSP Rajya Sabha MP, who Mayawati wanted to take complete retirement from politics, made BSP's national coordinator in 2019. This is the time when he in fact had a prominent position for the first time in the party. Named the political successor of Mayawati in December 2023. Then is stripped of all responsibilities in 2024. Was reinstated again by Mercurial Mayawati soon after. Then again was sacked from the party now in 2026 September. So what is going on? What is the reason behind these reinstallations and sackings? And what about the flip-flops of Mayawati? Let me very quickly go across at this moment to Rahul Srivastav, who knows the party like the back of his hand. He has tracked this party for a very, very long time. Rahul, you know, this is funny, the way things, the internal, in fact, dynamics are taking place. Every few months, he is reinstated, and every few months, there is a tweet by Mayawati in which it is informed that he's been thrown out. Is this the final throwing out of Akash Anand, or do you see there are still more chapters to be written as far as this book is concerned?
5: Ankit, today afternoon, a senior leader politician in UP said that it seems suddenly with today's events, the two big narratives of Uttar Pradesh politics are Naraz Phupa and Khafa Buaji. Now, you see, this has a history. Mayawati, sometime in 2023, declared Akash Anand as a successor. I think that's where lies the real issue. In 2019, he was seen at a rally in Agra for the first time when Mayawati was barred by Election Commission for some days from campaigning. And he did a good job. He pulled crowds. So in 2022, he was brought in national coordinator, 23 declared successor. But I think that's where comes in the problem. There is a certain degree of insecurity which we have noticed.

0: While the movie Mirzapur is in fact doing very well at the box office, winning accolades, on the other hand, suddenly there is a crisis for the team. A controversy over the use of Maharana Pratap's song in Mirzapur movie is now erupting. And how? The singer, along with Maharana Pratap's kin, BJP, the political party, have all hit out at the producers and the movie, saying that they can't use the song in a crime series, especially in crime scenes. They have asked the film body to take action against the filmmakers.
1: व्यापारिया बालम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एनडीटीवी पर. आपसे एक स्पष्ट सवाल, आपका वीडियो हमने देखा कि आपने कहा कि आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं एक्सेल एंटरटेनमेंट को और कह रहे हैं कि ये जो गाना है आपका है और आप भी जो हैं बहुत ही क्रोधित हैं, गुस्से में हैं कि जिस तरीके से जो गाने का प्रदर्शन इस फिल्म में किया जा रहा है, कि क्या आपत्ति है आपको, क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपका ये गाना है और किस तरीके से गाने का इस्तेमाल हुआ है, क्या आपत्ति आपको?
2: जो लीगल सबसे पहले नमस्ते, खमागणी, राम राम आप सभी को. और देखिए, लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है, वो चीज़ें हम एक बार साइड कर देते हैं. और जो मेन जो है, देखिए, ये मेरा विरोध नहीं.

0: ये पूरे भारतवर्ष का विरोध है। इस तरह से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास हुआ है फिल्म में, वो निंदनीय है। और हमारी जो मुख्य जो हमने जो बात रखी है लगातार, ये भी कहते हैं कि ये इट्स नॉट ए चीप पब्लिसिटी स्टंट कि हम चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये है हमारे अपमान की बात है, राजस्थान के अपमान की बात है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं कि क्या ये जस्टिफिकेशन होगा, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम मंदिर में भजन सुनते हैं और वहाँ पर हम डीजे पे बार सॉन्ग्स चला के नाचें, ये नहीं होगा ना, ये सरासर गलत है और इसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। पूरा भारत इस चीज़ का विरोध कर रहा है और जिस तरह से आम जन आगे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई है
1: जी। Alright, quick break at this moment. On the other side, I'm going to bring you a special story, actually very special for us here at NDTV. NDTV makes us flash and surprise and shine at the Apple event. Well, NDTV's app was part of the Apple's presentation for the Tech Giants Global Showcase. I'll get you the details on this after a short break. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
9: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: में स्ट्रे डॉग्स को उठा करके बोला गया शेल्टर बनाएंगे, जब कॉस्ट कैलकुलेट की गई तो 100 करोड़ से ज़्यादा सालाना आया। इस देश के अंदर ओल्ड एज होम्स बन नहीं पाते, बुढ़े लोग जिनको उनके यंगस्टर्स छोड़ देते हैं सड़क पर मर जाते हैं। सेम इज ट्रू फॉर ऑर्फन्स। आप किस दुनिया में हैं सर? क्या फंड्स हैं इतने?
1: So then Mr. Srivastav, what is the solution? Look, all of us can sit here and crib and say that this is a vicious circle. What is the solution?
0: देखिए, I am not saying कि don't take care, don't take measures, but all your measures should have economic realities. सबसे पहले करप्शन हटाइए, सबसे पहले सरकार को घेरो, वो कॉरपोरेटर जिसके यहाँ, यू हैव टू, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इस देश में एक पोलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी फाउंडिंग फादर्स लेकर के आए हैं, किस लिए लाए हैं? वो इसलिए लाए कि आदमी जो बैठा हुआ है आईएएस है, आईपीएस है, कॉर्पोरेटर है, एमएलए एमपी है, तुम्हें तनख्वाहें मिलती हैं, यू आर मेंबर पार्लियामेंट, इतने पर्क्स किस लिए?
1: लुक मिस्टर श्रीवास्तव, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस व्हेन यू ट्राई एंड मेक दिस पॉलिटिकल, दैट इज
0: नॉट पॉलिटिकल,
1: दैट इज वेयर इट एंड्स अप गोइंग इनटू एन एंडलेस लूप। यू आर टॉकिंग अबाउट द करप्शन टुडे।
0: आप सुनिए,
1: हैज करप्शन नॉट एग्जिस्टेड ऑल ऑफ दीस इयर्स?
0: एब्सोल्युटली, मैं कह रहा हूं ना, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, लेफ्ट हो, बीजेपी हो, इस हमाम में सब नंगे हैं।
1: तो सर, और इतने साल में फिर आपको कपड़े पहन लेने चाहिए थे ना भाई?
0: Let me speak.
1: इतने साल से आप लोग हमाम में बैठे क्यों हुए थे?
0: इसलिए, क्योंकि इस देश की जनता, इस देश की जनता जागरूक नहीं है, इस देश की जनता घरों में सोती रहती है, एक्शन लेते नहीं हो, सेल्फिश लोग हैं।
1: ओके, डॉक्टर
0: रंगनाथ, के नागरिक सेल्फिश हैं।
1: सो यू डोंट डू योर जॉब एंड इट्स द जनतास प्रॉब्लम। डॉक्टर रंगनाथ, इफ यू हैव डन योर जॉब
0: ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, दैट इज व्हाई दिस एमपीज एंड एमएलएस।
1: डॉक्टर रंगनाथ,
2: दिस वाज एन रिस्पांस दैट आई वाज एब्सोल्युटली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय गुड फ्रेंड विवेक। दैट्स व्हाई आई से व्हेन लाइफ गिव्स यू अ विवेक, मेक इट अ बंसल, नॉट अ श्रीवास्तव। What is he actually saying? Is he saying ki corruption should be tackled? Kal hat jayegi corruption. You have to give a solution. And the solution is jo 20,000 students university bharti kari ja raha hai, ek responsibility hona chahiye ki unko aap accommodation denge ya to campus mein ya outside. How much does it cost?
0: Are wo fees aur bada dega.
2: Make a dorm.
0: Pehle hi private colleges ki fees itni zyada hai sir.
2: Fraction of the cost what the students are already shelling out.
0: Do you know the fee structure?
2: Vivek, I did not interrupt.
0: नहीं, आप सरकारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट?
1: ओके, वन एट अ टाइम, देन आई वांट टू ब्रिंग इन द स्टूडेंट्स, लेट हिम फिनिश, आई एम कमिंग बैक टू यू।
2: Yes, the students who died, Padmaja, you know that each one of them was shelling out 20,000 rupees a month.
1: Minimum.
2: Are you telling me that not guarantee them an accommodation at 1/10 the cost? Of course it can. You just need a government stamp on the fact that from now on, any new student who's enrolled must be guaranteed accommodation. ये सब बंद हो जाएगा माफिया।
0: Only 10 seconds. Education mafia और बढ़ेगा। अभी तो सस्ते में कहीं कमरा लेके चार बच्चे जो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है रह लेते हैं, कल वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला बोलेगा हिल से हॉस्टल भी लेना पड़ेगा, 25,000 भी दो और ये सिक्योरिटी भी दो।
1: सो जनरलाइजेशंस लाइक सेइंग वी मस्ट एंड करप्शन, सर,
0: यस,
1: वी हैव लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट फॉर अ मिनिमम ऑफ 30 to 40 years, ईच वन ऑफ अस, एंड अगर आपने करप्शन खत्म कर दिया और आपको लग रहा है 10 साल में होने वाला है, जस्ट टू पुट दिस इन परस्पेक्टिव, एंड देन आई वांट टू ब्रिंग इन सम स्टूडेंट्स ऑल्सो, हाउ मच डू दीज स्टूडेंट्स एक्चुअली शेल आउट? रिमेंबर दैट all of these people who are living in areas like Kingsway Camp, Mukherjee Nagar, Malviya Nagar, Shanti Niketan, they are people who are coming from small towns, people like us whose parents are spending a lot of money to ensure that they get a good education in one of the premier institutes. They pay up to 20,000 rupees per month, and what they get in return are rooms, and I have been in one of those myself. If you put in one bed, a single bed, there is no more space than to fit one table and chair and maybe one wardrobe. Do you know most of these kids do not even have an independent toilet? You end up paying 25,000 rupees and you have to share a toilet with somebody else. 10,000 rupees per month for one bed, and this is exclusive of food. You have to pay extra for food. Why you keep coming? Because this is close to a metro station. You think that you will save on fuel because you can just walk it to college. A lot of children now want to jump in over here. Yes, go on, ma'am. What do you want to say?
3: Ma'am, my very first thing is ki ye bana, who is responsible, if you are asking, each and every political party who was there, each and every representative jo humne dekha hai in the past 20 years, 30 years, 50 years, jab se wo building khadi hai, wo kitne saalon se khadi hai, each and every person is responsible for this, be it MCD inspectors jinhone is cheez ko approve kiya, bureaucrats who have approved this, or politicians jinhone dekha is building ko bante hue. And second thing is ki Delhi University institution ki hum log baat kar rahe hain, 3 lakh bacche दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 1600 करोड़ का फंड दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है, तो और आज हॉस्टल्स कितने हैं, 4% बच्चों को हॉस्टल्स मिल रहा है, 3 लगभग 5000-6000 हॉस्टल्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त, और हम कह रहे हैं कि

0: जनता जागरूक नहीं है। जनता जागरूक कैसे नहीं है सर? जनता जागरूक है। एक बच्चा जो कि 18 साल का है, अपनी फैमिली उसकी आई है, वो डिग्री पे ध्यान देगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, या वो जा करके ये देखेगा अगर कोई चीज है वो ब्रॉड डेलाइट में ऑपरेट कर रही है, तो फिर हाउ डू वी से कि एक बच्चा डिग्री पे ध्यान दे या फिर जा करके वो रूम देखे?
1: बिल्कुल ठीक है आपने। आपका आपका पीजी हवा में तो नहीं लटका हुआ, आपका जो पीजी है दैट इज द रेजिडेंशियल कॉलोनी, उसमें लोग हैं आसपास, उसका आरडब्ल्यू है, वो बिल्डिंग कैसे बनी, उसमें पीजी कैसे रन करा? आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्टूडेंट, आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्टूडेंट, आई एम ब्लेमिंग द रेजिडेंट्स ऑफ सत्य निकेतन जिन्होंने भ्रष्टाचार को होने दिया। उस कॉर्पोरेटर को रीइलेक्ट करते हो आप, उस एमएलए को रीइलेक्ट करते हो
0: सर। जब हम अब सवाल पूछ रहे हैं तो व्हाई आर वी बीइंग पुश्ड डाउन?
1: No, you are not being pushed out. I am telling you the dark reality. यहाँ तो आप पीजी में आ गए, जहाँ से आते हो वहाँ भी यही हाल है।
0: सर तो ये सवाल हम पूछे जाकर के पीजी ओनर्स से या हम पढ़ाई पे ध्यान दें?
2: ओके one second. ओके डॉक्टर नागन 30 seconds, then हर्षवर्धन।
3: No, not even 30 seconds. I will give you an analogy. What would you call a hospital that keeps on admitting patients without adequate beds for them? That is exactly what is happening. The universities keep on admitting students without giving them proper accommodation. They are worried how the lady is absolutely right. How can you study when you are given such to be packed like sardines in an accommodation that is worse than a slum?
2: So Harshvardhan ji, ye bataiye ki sirf 4% logo ke liye jab hostel hai to fir college pe college, college pe college kyu banaye ja rahe hain? Why can't all of them be given hostels or residences as well?
4: पंजाब मुझे लगता है थोड़ा सा रियलिस्टिक जो अप्रोच है उससे आनंद भी आज मैं उनसे पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ, और विवेक भी वही काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे ही सेल्फिश हो गए, सोसाइटी ही सेल्फिश हो गए,
1: बच्चों के बाप सेल्फिश थे।
4: अरे एक मिनट,
1: खड़े होकर के गलत गलत एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर बैठाओगे सर पे देश के, अजीब से मंत्री ये पास तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर है,
4: आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या क्या है? आप ये समझते हैं कि किसी भी इशू पर कम्युनिस्टों को कुछ बोलने का, कुछ ऐसा बोलने का मिले जिससे उनको पॉलिटिकली लाभ हो जाए, लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि आप कुछ करते नहीं है, आप कुछ करते नहीं है। मूल मुद्दे पे बात करने दीजिए। जो आनंद कह रहे हैं आइडियल उसको देखें तो बड़ा अच्छा है, सबको हॉस्टल मिलना चाहिए, सबको गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अप्रूव होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। और मैं जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे 90 के दशक में, हॉस्टल होते थे और उसके अलावा जो अलग अलग मोहल्लों में होते थे उनको हम लोग डेलीगेसी कहा करते थे, उनके भी बाकायदा जब वहाँ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते तो डेलीगेसी से भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते, तब वो छात्र संघ बनता था। एक तो देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ नहीं है, या छात्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। JNUDU में है छात्र संघ, लेकिन छात्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, वरना सभी छात्र संगठनों को, सभी छात्र संघों को क्या यह पता नहीं है कि इस तरह की बिल्डिंग में बच्चों को ऐसे रहना पड़ा है? नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे जरूरी बात है, जैसे हम लोग जो ध्यान में है, एक मंजिल दो मंजिल का बना, उसको ईंट की इमारत बनती थी और उस पर आके लोग रहते थे, बच्चों को सस्ते में मिल जाता था इसलिए डेलीगेसी में चले जाते थे। यहां भी वही होता है, साउथ कैंपस के नजदीक था वो, लेकिन उसके ऊपर बिना किसी पिलर के 1, 2, 3, 4, 5 और सारी सरकारें बेशर्मी से बेहयाई से देखती रही। वो कैसा वो एमसीडी का कमिश्नर है जिसको अपने से इस्तीफा देने का मन नहीं हुआ? वो कैसा इंस्पेक्टर है जिसकी हाथ से कलम चली होगी कि नहीं नहीं ये ठीक है? और उससे आगे मैं उसी में एक किसी को सुन रहा था, चूंकि मैं तो वहां गया नहीं, किसी को मैंने सुना कि यहां एमसीडी 15 दिन पहले नोटिस लगा के गई कि ये रहने लायक नहीं है, लिवेबल नहीं। उसके बावजूद वो आदमी जो जिसके ऊपर सीधे सीधे अपराध मामला दर्ज होना चाहिए गैर इरादतन हत्या का, उस आदमी ने वहां पर लोगों को कमरे किराए पर दे दिए।
2: हर्षवर्धन जी, फैक्ट इज कि ये लोग सिर्फ सस्पेंड होंगे ना, इनमें से कितने लोगों को जेल में भी डाला जाएगा?
4: सस्पेंड नहीं होना चाहिए। आप जब तक रिकवरी का कोई बड़ा प्रेसिडेंस नहीं लगाएंगे, लगे कि हाँ एक इंजीनियर था, करोड़ों कमा के बैठा था और उसके घर से पैसा खींच के लाए, लगे कि कोई इंस्पेक्टर था, कमिश्नर था, उसके घर से पैसा खींच के लाए। और एक बात मैं और कह दूं, अब यहां मैं सोसाइटी की बात करता हूं, जब ये घर टूटेंगे तो आपको भी सोचना होगा, अगर इल्लीगल बना हुआ है जब वो टूट रहा हो तो आप धरना प्रदर्शन करने मत जाइए।
5: सर मैं इतफाक रखता हूँ हर्षवर्धन जी की बात से। इनफैक्ट सर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, आई एम परस्यूइंग माय मास्टर्स इन क्रिमिनल लॉ आल्सो। आई हैंडल दीज डेमोलिशन मैटर्स ऑन अ डेली बेसिस। इनफैक्ट इन अ मैटर विच आई एम रिप्रेजेंटिंग फॉर द क्लाइंट, देर आर 4 consecutive ऑर्डर्स दैट हैव बीन पास्ड बाय द कोर्ट क्वा द सेम प्रॉपर्टी दैट यू डिमोलिश इट, that you demolish it, the MCD officials, they don't take any action against them. The person has to go to the court, file a contempt against
2: them. Why?
5: I am just reading out a particular judgment that has been passed by the Supreme Court, exactly on point. In fact, I would like the viewers of NDTV to hear this.

0: This is the Supreme Court. We want the authorities to ensure that such incidents do not occur and all steps are taken to protect human life. We once again impress upon the states and all its authorities that if action is not taken today, it will be too late in the day thereafter to proceed in accordance with law. Do not give an impression to the people at large that they will be saved or their illegal constructions will be compounded on mere asking or mere request. Right action at the right time must be taken, and that is the only way that the state will be able to maintain the rule of law. Just one more minute. We make it clear for once and for all that mere passage of time or laxity on part of the authorities in taking timely action will not cure the illegality itself. Passage of time can never be a ground to compound the illegality or unauthorized construction. What is illegal or what is unauthorized would always remain so, and by efflux of time would not become authorized or is liable to be compounded. So the point is, sir, a bulldozer cannot become an ambulance of public governance, and it cannot arrive at the door after 7 people have been killed. It has to be done prior in time. Mm-hmm. And the most important thing is the court's question about locus. The court says that why do you care? As if something unauthorized happens, suppose in Noida, I am a resident of Jangpura. The court will ask me, why do you care that it's unauthorized?
1: Let me ask you this. Why did the MCD not act despite a Supreme Court order being there?
0: They are not acting. They say that, okay, the private...
1: Has any action been taken against those officers who haven't acted?
0: So basically, the matter is still sub judice. It's before the contempt court. And the MCD filed an affidavit that regularization application has been filed by the private builder.
1: It may
0: there
1: sound
0: is huge,
1: but isn't
0: huge
1: the way out only to ensure that if there is an official who has not acted against an illegality, that person should not be suspended, that person should be jailed?
0: Yes. Yeah, what do we do about
2: this?
0: This is
2: such a complex problem which it needs to be tackled at so many levels. First of all, I would like to say when we started with that buck stops where it starts. These incidents had been innumerable incidents. If we go by the statistics of 2024, 456 structural buildings got demolished like that on their own. In 2025, 555 buildings came down because of illegal construction or climate ravaged or whatever the buildings may
1: You're
2: have been.
1: You're talking about the accidents.
2: No. I'm not. Buildings which had come down in Delhi.
1: Which have come down. Let me actually show you that data. I have that data here with me. So between 22 and 23, 349 such incidents have taken place, resulting in the deaths of 43 people and 315 people were left injured. In 23-24, 371 such incidents took place and it left 23 people dead and 171 injured. And in 24-25, according to the Delhi Fire Service, you've had 32 such incidents with the death of 32 people. We have 413 such incidents with 32 deaths and 187 people who were left injured. So that's as far as data. I have a very simple question. You're saying, where does the buck stop? Many people can be identified. I'm asking you simply about these MCD officials. Why shouldn't they be jailed?
2: Definitely.
1: Why should they only be suspended?
2: No. I 100% agree with you that there has to be some deterrent punishment. Why things don't happen like you see, stealing and all in Middle East countries where the laws are very, very stringent and severe. So something of that parliament has to come.
1: Ask you this, sir. You're saying that there has to be a deterrent. Do you know in 2006, when the Supreme Court had ordered demolition in Delhi, you had the UPA government bring in a law which put a stop to all of these illegal buildings being demolished. If you are going to not show political will, then it's very easy to say something must be done.
2: But
1: when something is done, people get on the street.
2: As we started,
1: that is the problem.
2: As we started, and you yourself said ki hamam mein sab nange hain. So we cannot point out
1: so
2: that
1: sir,
2: why UPA.
1: So sir, jo hain nange, unko call out karna padega na. Tabhi to wo kapde pehnenge.
2: That is what I am saying. You cannot single lessons. Single out any particular party for that.
1: You should single out all of them.
2: All of them.
1: That's my argument.
2: That's what my submission is. And an incident like this had happened earlier when this water logging.
1: Of course,
2: I think that was a time when the alarm should have been raised by the CM. What the CM has.
1: But
2: Delhi,
1: was it
2: Delhi
1: raised,
2: CM
1: sir?
2: Had to say.
1: Uske baad kya hua?
2: She is literally rebuking the students for that. She is not ready to take the blame. She is not ready to say that we should have woken up much earlier.
1: Okay, Harshvardhan ji, then Dr. Ranganathan.
3: सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या illegal कब्जा करने वालों के पक्ष में अदालतों में जाने वालों को अदालतों को बर्दाश्त करना चाहिए। असली सवाल जो है
4: इल्लीगल किसे कहते हैं?
3: अगर आप इंक्रोचमेंट करेंगे और उसके बाद अदालत जाके वहां से स्टे लेके आ जाएंगे और नेता वहां पहुंच जाएंगे बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे, तो जब बच्चों की जान चली जाएगी तब आपको लगेगा यार ये तो इल्लीगल था। आपने अगर झुग्गियों को उनको स्लम को कह दिया कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, दिल्ली की सारी ऐसी कॉलोनी हर जितने शहर है कम से कम अर्बन एरिया को रेगुलराइज करके, और मैं कह रहा हूं अगर 500 गज का उसने लीगल एनक्रोचमेंट कर रखा है 250 गज को आप
1: अरे वही बुलडोजर्स रन बिलेटेडली
4: पॉलिटिशियन के टूटने के विरोध में हो,
3: पुलिस नहीं जा सकती, और उस इलाके में अगर आप करें तो विकसित भारत ऐसे नहीं बन
1: सकता।
3: फिर डिमोलिशन करिए, किसी यूपीए के समय में अगर कोई कानून आ गया रोकने की कोशिश हुई ये भला नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा।
1: एंड पॉलिटिशियंस गो एंड स्टैंड इन द वे ऑफ बुलडोजर्स400 crores people have gone and got a stay from court. ये कोई गरीब नहीं है, they are squatting illegally on land and वहाँ bulldozer चलना चाहिए।
4: मैं सुना
1: तो गरीब पे अमीर पे छोड़िए, bulldozer हर जगह चलना
3: चाहिए। जमीन एक फार्म एक मिनट regularize कराओ, flat लो, फिर कब जाकर?
1: डॉक्टर रंगनाथन
4: 10 सेकंड तो बोले तो
1: डॉक्टर रंगनाथन डॉक्टर रंगनाथन
4: अब ये गलत बात है,
1: he's outside ना,
4: झुग्गियों के demolition की आपने बात करी, मुझे 10 सेकंड
1: लो सर, एक सेकंड
3: ये बड़ी बड़ी बात है ना, ये आपकी आदत यही खराब है, गलत जगह जाते हैं
4: बिल्कुल। आप झुग्गियों को टारगेट करने की बात कर रहे हो
3: टारगेट
4: और बुलडोजर की आप बात कर रहे हो,
1: एक सेकंड मिस्टर श्रीवास्तव,
3: सर बुलडोजर लगेगा, आप हाथ से नहीं तोड़ पाते, हसिया थोड़ा सा नहीं टूटता है, और
1: सत्यनिकेतन सत्यनिकेतन सत्यनिकेतन डिड नॉट हैव एनी झुग्गी।
4: कैन आई स्पीक फॉर 10 सेकंड्स?
1: गो ऑन।
4: थैंक यू। सैनिक फार्म वीआईपी एरिया है, इलीगल है, वो नहीं टूटेगा। छतरपुर फार्म्स इलीगल एरिया है, वो नहीं टूटेगा। आप ट्रेन लेके बस लेके कार लेकर के जाइए छतरपुर से गुड़गांव, नेशनल हाईवे दोनों तरफ एनक्रोचमेंट, बड़े बड़े फैशन के आउटलेट्स इंटीरियर आउटलेट्स नहीं टूटेंगे, इनको सिर्फ गरीब की झुग्गी दिखती है। दूसरी बात जब एक आदमी दिल्ली शहर में, एक मिनट ऐसा नहीं है सर, अब आप सुनिए, ये लेबर क्लास में हंसने वाले लोग, असलियत यह है एक गरीब आदमी दिल्ली शहर में
3: आते हैं
4: जब घर बनाता है, एक डोंट इंटरप्ट मी,
3: तो ठीक रही है,
4: आई डोंट नो व्हाई यू
1: इंटरप्ट
3: मी, वन एट अ टाइम, बच्चों के लिए बात होते
1: हैं, हर्षवर्धन
3: उन बिल्डिंग वालों के लिए, उन बिल्डिंग वालों के लिए क्यों खड़े हो रहे हो, बच्चों के लिए खड़े हो जाओ ना, बिल्डिंग वालों के लिए मत खड़े हो, बच्चों के लिए खड़े हो जाओ,
1: फिनिश योर पॉइंट।
4: मैं एक गरीब आदमी दिल्ली शहर में आता है, दिल्ली के नागरिक और बाकी मेट्रोस के नागरिक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं घर बनाना कितना महंगा है। पहले वो बेचारा देखता है यहां मैं घर बना सकता हूं हाँ या ना, एमसीडीवी वाला आता है कहता है कोई बात नहीं साहब थोड़ा पैसा तो बना लो, बाकी उन्हें बना रखा है, वो घर बनाता है, उसके बच्चे पढ़ने लगते हैं रहने लगते हैं, 10 साल बीतता है, 20 साल बीतता है, 30 साल बीतता है, 40 साल बीतता है, एंड ही स्टेइंग बिकॉज ही वॉज अलाउड टू स्टे।
3: ये
4: सरकार शालीमार बाग को तोड़ती है,
3: पिछले 40 साल से सरकारें ऐसे ही इल्लीगल बस्तियां बसा रही
1: हैं, खतरे में डाल रही हैं, तो कर रही
4: है। उसको कॉम्पेंसेशन कौन देगा?
1: व्हाट विवेक,
4: उसको कॉम्पेंसेशन कौन देगा जिसका घर आपने बसने दिया फिर तोड़ा?
1: व्हाट विवेक श्रीवास्तव सीम्स टू बी सजेस्टिंग इज दैट इन द नेम ऑफ रिमूविंग इल्लीगल कंस्ट्रक्शन द बुलडोजर्स विल रोल सिलेक्टिवली ओवर द वीक एंड द पुअर्स हाउसेस, द रिच एंड कनेक्टेड विल बी स्पेयर्ड। डॉक्टर रंगनाथन,
5: Padmaja, please give me a couple of minutes because you'd asked me to come in 5 minutes ago and this is the reason why Vivek comes to the studio because he can't be faded out. यहाँ पे चीखते चिल्लाते रहते हैं, अब इनको fade out नहीं कर सकते, मेरा time ले रहे हैं। Vivek, please don't. Vivek,
1: okay. I'm coming to you next, Mr. Bansal.
5: नहीं बोल लो फिर विवेक।
2: अरे मैं नहीं बोल रहा भाई, बंसल साहब दूसरे विवेक
1: बोल रहे हैं, डॉक्टर रंगनाथन
2: दो दो विवेक हैं आपके सामने।
5: व्हाट आई एम गोइंग टू से आउट हियर माइट हर्ट अ फ्यू बट इट इज एम्बैरेसिंग दैट माय फेलो पैनलिस्ट ऑल थ्री ऑफ देम आई एम सॉरी टू से आर सो क्रूअल एंड इरेशनल टूवर्ड्स फेलो इंडियंस। मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी जो रैशनैलिटी और लॉजिक वाली जीन है वो कहां चली जाती है। ये क्या सोल्यूशन दे रहे हैं कि भाई जो भी इलीगल बिल्डिंग बनाता है वो नहीं होनी चाहिए, करप्शन हटनी चाहिए। अरे भाई 80% ऑफ दिल्ली इज इलीगल एंड अनप्लान्ड, हर बिल्डिंग को गिराओगे और नहीं बनाओगे तब स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए वो दोगे? You have to have a situation where studying has to be clubbed with dignity. Stub mein baitha hai, toilet nahi hai, ek bistar nahi hai uske paas, aur keh rahi ki wo padh lega.
2: I have strong objections to what you were saying that the all
5: Mr.
2: three
5: Bansal,
2: panelists.
5: I didn't interrupt you,
2: no,
5: please.
2: Please, all three panelists are erased. Not at all.
5: I'm not
2: been
5: in the
2: very
5: studio.
2: Discreet. I had been very discreet and listening to you. I was not at all shouting, and I had been hardly given any chance to speak. So don't come out with all this. So let me just say that example we are giving to this Gen
5: Z. What is the solution
2: we
5: that you're giving?
2: Dignify. We have to come out with solutions. We are indulging
5: Can
2: in manhattu. This is what we are teaching this Gen Z. This is what we are teaching this Gen Z. We have to come out with some real solutions, not just to get brownie.
1: What is the solution?
2: Solution is to be multi-pronged. When you say punishment is to be deterrent, when we say that there has to be some regulatory, there has to be some regulatory body which goes into the whenever renovation takes, whenever it has to retrofitment of any building takes place, there has to be it is to be sanctioned by a structured body or get some permission from the engineer or something of this sort. Has to be regulatory body, has to be there.
1: So let me ask you this, Mr. Bansal, there has to be some का क्या मतलब है? अभी तक बनाया क्यों नहीं regulatory body?
2: There are so many things which have started.
1: वो क्यों नहीं आया इतने सालों से? 50 साल से सत्यनिकेतन में वो building खड़ी कैसे रह गई? There has to be some का क्या मतलब है?
2: Everybody has to take the blame. That is there.
1: Sir, I am not here to look for who to blame. I am here to look for solutions.
2: I am suggesting the solution. You only got back to the fact that they are existing for last 50 years.
1: Sir, let me give you a solution. पहले mic पे तो बोलो
2: आप. मैं mic पे ही बोल रहा हूँ. आप बोल ले देंगे. This is what I am saying. It is to be, you know, that government is responsible. Some regulatory body like this building had come up and this was not being demolished. Some vigilance on the part of the residents as well, neighborhood residents as well. It is to be a
5: very unfair because I should be there.
1: Dr. Ranganathan, 30 seconds, yes.
5: You know, 30 seconds? मेरे को 5 मिनट पहले आपने Padmaja, you are running your संसद just like these guys run their संसद.
1: Okay, two minutes, Dr. Ranganathan, go on, yes.
5: I thought at least your संसद would be better and more civilized. Alas, it is not. ये तीनों के तीनों एक solution नहीं दिया क्योंकि ये सब मिले हुए हैं. ये जो Mr. Bansal हैं, इनके सारे कांग्रेसी नेता इंक्लूड
2: I would say let's not politicize it. It's a too serious a problem. It needs to be tackled in a very, very
5: serious way. It was a serious problem for 40 years. You did nothing about it. Why do you keep on saying serious a problem? You are complicit in it.
2: This problem is being highlighted at this point of time. This problem is being highlighted at this. It has come to the notice. Has NDTV at any point of time prior to this has held a debate?
1: Yes.
2: So has on this
1: answer to that is yes. Give him 2 minutes without interruption because all three of you are in the studio. He is not. Go on, Dr. Ranganathan, make your point.
5: Is there somebody who is speaking for the students?
1: Yes.
5: वो 2-2 लाख रुपया फीस दे रहे हैं और आप उनको 5,000 के accommodation नहीं दे सकते यूनिवर्सिटी की क्योंकि आपको पार्लियामेंट में कहना है कि हमने 10,000 स्टूडेंट्स और एजुकेट कर दिए 20,000 आज के शर्म की बात है ये तीनों की तीनों जो वहां बैठे हैं स्टूडेंट्स का एक भी नहीं सोच रहा द यूनिवर्सिटी विल बी पेइंग अ पिटेंस इफ इट गारंटीज एट लीस्ट वन accommodation फॉर द
2: स्टूडेंट हु कम आउट ऑफ द विलेज अ स्टूडेंट हु कम विद बेयर मिनिमम मनी ही कम्स टू द टू द बिग सिटी टू उसे बेटा That's not what I wanted to hear from
1: okay.
2: you, gentlemen.
1: You know, it is very easy, Mr. Bansal. Let's take two for a second, and it's very easy to say, let's not get politics into it. The ugly truth is that had it not been for politics, this mess would not have proliferated around us. It is exactly because of politics that things have gone from bad to worse to absolutely abysmal. Yes, go on, young lady.
3: Sure. I have only talked about the solution. Anand has probably not heard.
1: Yes, okay.
3: I have only talked about solutions की बात की।
1: I will say सब लोग मिले हुए नहीं हैं। They have different corners that they are occupying.
5: सब मिले हुए हैं। सब मिले।
1: Okay. Let this young lady speak. Yes, go on.
2: At any point of time, you felt that I was trying to politicize or I was in cahoot with them or I was not coming to that was.
1: अरे मिस्टर बंसल, this is not about you. Yes, go on.
6: So sir, Dr. Anand, you made a statement that we should come to solution and you gave a solution that you should provide accommodation for every student. Do you think it's structurally possible to do?
5: Yes, absolutely.
6: How? I want a solution from you. And second of all, I want to ask that DU ke campuses itne bade hote hai, why don't we have hostels and staff accommodation there?
1: Okay, first answer, Dr. Ranganathan, how is it possible to provide accommodation to such a huge number of students?
5: Now, one second, please remember, they have made this number a huge number precisely because they don't care about the accommodation. They are not teaching the students with any dignity. The students are staying in a slum with two bricks as a toilet and they are saying ki padh lo likh lo. Of course it is possible, of course it is feasible when you're charging 20,000 rupees per month to a student. Do you think you cannot have a proper one room, accessible, safe and very clear accommodation for them?
6: But how do you think it will happen? Like how do you think we'll go about the process? How will we make feasible for every student?
1: There are 2.5 lakh regular students.
6: I want the answer. Yeah.
1: Only 7,000 hostel seats, 2.5 lakh students who come into
5: it's
1: Delhi.
5: A crime.
2: Make Mr.
1: But how do I give them 2.5 lakh houses?
2: Education
1: who will now make 2.5 lakh houses?
4: अरे World Bank से पैसा लो, अपने businessman दोस्तों को दो, वो बनवाएंगे आधा वो आधा BJP.
1: Sir, let's not make it frivolous if we are actually looking for solutions. No, it is not frivolous.
4: This
1: it doesn't need
4: frivolous
1: to be frivolous.
4: Now.
1: It doesn't need to be frivolous.
4: एक गरीब मुल्क में आप कह रहे हैं सबको hostel
1: दो. Okay, 10 seconds, Dr. Ranganathan, I really want to bring in students. 10 seconds, go on.
5: No, this is why this country has gone to the dogs. पहले प्रॉब्लम खड़ी कर दी, इतनी बड़ी हो गई, फिर कह रहे हैं इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. Shame on you.
4: The fact of the matter is, talk of the economics. Calculate the money and tell me.
2: And really, I would say that.
7: My deep condolence to the family who lost their Zim. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक प्रथा चलती थी जहां पे हम बलि दिया करते थे जानवरों की और फल फूल की, कुछ भी नया काम, कुछ भी सुधार लाने से पहले. वही हमारे देश में आज हो रहा है. हम बच्चे को बलि चढ़ाया जाता है, मरते हैं, उसके बाद फिर समाधान खोजने हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए आते हैं. और समाधान में क्या आता है? बुलडोजर चलाना. बुलडोजर चलाने से इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन उन गुनहगारों को कौन उनसे जवाब पूछेगा? मेरा ये क्वेश्चन है. और मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लेके मौजूद नहीं हूँ, मैं यहाँ सॉल्यूशन भी लेके उपलब्ध हूँ. मेरा सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को एक ऐप बनाना चाहिए जिसमें पीजी ओनर और स्टूडेंट दोनों रहें, और उसमें ये बताया जाए कि कौन सा पीजी इलीगल है, कौन सा लीगल है, किस पीजी को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, कौन से पीजी में अच्छा पानी आता है. क्योंकि दिल्ली में हम क्लोरिनेटेड वाटर पीते हैं. दिल्ली से जब हम अपने घर से आते हैं तो बाल लेके आते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो बाल झड़ जाते हैं.
1: तो आप कह रहे हैं कि इसका रेगुलेशन होना चाहिए और इसको एक जगह पे इट शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज दिस इंफॉर्मेशन. नाउ इंसिडेंटली अ बिगिनिंग, एटलीस्ट वी आर टोल्ड दैट अ बिगिनिंग फॉर दैट हैज बीन मेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द पीजी रेगुलेशन लॉ. Imagine, and I agree with this young man, you know, he said that first you have to have a series of these tragedies for somebody to wake up and say, oh, we need to have a regulation law. Imagine all of this while, why wasn't this regulation done? Has anyone thought about it? Has anyone asked that question? What are the proposed provisions now the proposal is being made? A mandatory PG registration within 90 days, a unique registration number for every PG. Delhi police and MCD clearance is going to be mandatory. Imagine, this clearance wasn't even mandatory all of this while. A GOV PG portal for verified listing of PGs, exactly what this young man is talking about. CCTV coverage at entrances, common areas, licensed night guard for PGs with 15 plus students. Area-wise rent bands to be set by a panel. So there is going to be regulation of how much rent should be charged. 30-day written notice before eviction and strict action on non-compliant PGs. And that's why I ask Harshvardhan ji. Aap sochiye, ye ladka yahan par bol raha hai ki hume ek app karna chahiye. Ab ja karke LG ne meeting ki aur unhone kaha, arre hume ek portal karna chahiye. Itne saalon se ye portal to ho jana chahiye tha na?
3: Padmaja, jitne isme proposed suggestions hai, regulations hai, wo sab in place hai. MCD एक ईंट रख के देखिए, आपको बताएगी कि MCD होने का मतलब क्या होता है. और कोई कहेगा कि वहाँ के कॉरपोरेटर को पता नहीं होगा। और हमारे ये नौजवान साथी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन बुलडोजर किस संदर्भ में आप देख रहे हैं? अगर आपको रेगुलेशन करना है, कोई इलीगल स्ट्रक्चर है, तो उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर ही लगेगा। सवाल यहाँ ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि जो इलीगल ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, उनको हम तोड़ें? तो फिर और दूसरा, वो कोई बगल का पड़ोसी नहीं करेगा, वो झगड़े करने के लिए नहीं आएगा, वहां के लिए बाकायदा अथॉरिटी है, उनके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ, वो काम नहीं कर रहा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो उस इलाके में जितनी इलीगल बिल्डिंग है एक बार टूटनी चाहिए। वो सालों से बच्चे

0: बच्चों से खून चूस रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सेफ स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे। और मैं एक बात कहता हूं जो थोड़ा समझ में आए, दिल्ली में इतने लोग रहते हैं, आनंद को शायद चूंकि प्रोफेसर साहब है लंबे समय से मुझे भी मिला हुआ बता दिए, तो मैं तो सोल्यूशन ही दिया, वो शायद उस तरह से पढ़े नहीं है। हम जो डेलीगेसी की बात करते हैं, हमारा इलाहाबाद में घर था, हम थोड़ी ना हॉस्टल लेंगे। हम अगर उतने एकोमोडेशन जो दिया जाता है, किसी भी आइडियल से आइडियल कंडीशन, वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता कि सारे के सारे हॉस्टल में रहेंगे। जेएनयू के बगल में पूरा मुनीर का गांव है जो बसा हुआ है, जिसमें सब बच्चे रहते हैं। डीयू तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, अगर वो कॉलेज बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, हम एक है ना गाड़ी के आगे काट रख देंगे, ना ना हॉस्टल नहीं बनेगा तो पढ़ने नहीं देंगे, ये तो रिग्रेसिव हो जाएगा ना। जरा ये भी सोचना चाहिए, बिल्कुल उसको रेगुलराइज करिए, अच्छे से अच्छा उसको डिग्निटी दीजिए स्टूडेंट को, लेकिन ये कहना कि ना हॉस्टल नहीं होगा तो सब बंद कर दो, ये आंकड़ों की ये ठीक नहीं।
1: You heard plenty of stories on Satyaniketan. There are more students here who live in hostels. I want to get a few of their stories in. Just a second. आप पीजी में रहते हैं? कहाँ है आपका पीजी और किस तरीके का है बताइए।
2: जी टी बी मेट्रो में है, लाइक नॉर्थ कैंपस के पास में। सर लाइक जब मैं दिल्ली में आया था तो लाइक आई कम फ्रॉम उड़ीसा, तो स्टार्टिंग में मुझे पीजी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ था। मतलब पीजी क्या, लाइक आई अप्लाइड फॉर हॉस्टल, दो तीन महीने तक हॉस्टल पे कुछ अपडेट्स नहीं आती। तो सर ऑल दो मेरे रिलेटिव्स रहते थे तो मैं उनके घर में दो तीन मंथ रुक गया था, तो इट वॉज़ फाइन फॉर मी। पीजी सर आप देखने जाएंगे, आप देखेंगे हर जगह का अपना अलग अलग रेट है। मैं साइड वाले पीजी में देखूंगा, उसमें पहले 7 दिन अच्छा खाना दे देंगे, फिर खाने का क्वालिटी बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा। सर आई गो टू एरिया जहाँ पे मेरे दोस्त लोग रहते हैं, जैसे देर इज़ मलकागंज वगैरह, वहाँ पर देखेंगे सर मतलब एक घर के ऊपर उन्होंने पूरा जैसे मॉन्यूमेंट जैसा पूरा खड़ा कर दिया, मतलब जस्ट टू पुट मतलब और बच्चे उसमें रहे। तो सर ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड सर मतलब ये बिल के
0: रेगुलेशन जरूरी है।
1: कितना yes. कितना पैसा देते हैं आप हर महीने?
2: सर इट इज 15,000।
1: 15,000?
2: यस मैम।
1: एंड प्लस यू पे एक्स्ट्रा फॉर फूड आल्सो?
2: मैम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल।
1: एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो यू एंड अप पेइंग अबाउट 15 to 20,000।
2: 18 to 20 इज द लाइक।
1: और घर के मुकाबले आपको पीजी उतना ही बड़ा है जितना घर में कमरा हुआ करता था?
2: मैम इट इज लाइक वन
0: बेड होती है वहां, कमरे नहीं होते।
2: यस मैम
0: वो तो बेड होती है आपकी, 2, 3, 4 ऐसे ही होता है।
2: यस मैम।
1: तो यानी कि
0: सिंगल ले रहे हैं तो
1: बेड का 15,000 रुपए दे रहे हो?
2: यस मैम।
1: और यानी घर पे अपना खुद का कमरा था, यहाँ एक बेड में रह रहे हैं 15,000।
2: मैम टू बी ऑनेस्ट आपको उड़ीसा में उससे बड़ा घर मिल जाएगा एट द हाफ द रेट, मतलब लाइक यू विल गेट 2 to 3 BHK मतलब 15-20,000 में, लाइक द होल house itself.
3: You get the food along with
2: it? Yes, sir.
1: 15 to 20,000 this boy would have got on rent in his house. Yes, Dr. Ranganathan, go on.
4: मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं हर्षवर्धन जी मेरे मित्र ही नहीं मेरे भाई हैं, कि ये सारे इंडियंस, मैं दोबारा कह रहा हूं, लॉजिक और रैशनैलिटी कहां चली जाती है? आप सिर्फ बिल्डिंग की सेफ्टी की जरूरत नहीं है, एक काल कोठड़ी भी सेफ हो सकती है। टॉयलेट अगर 100 लोग सेफ यूज कर रहे हैं उसको भी आप सेफ कह सकते हैं? वेयर इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन?
0: ऐसा मैंने कहा नहीं,
4: आई कैन नॉट। हर्षवर्धन जी ये बहुत, आप ऐसे नहीं थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर हैज टू बी एजुकेशन हैज टू बी डिसेमिनेटेड विद डिग्निटी। Even if you are staying in a safe building, it is not dignified for us 10 students to be sharing one tiny cubicle room without any food, without any dignity. Ye samajh mein kyun nahi aa raha?
1: So Anand, I think Anand, I think we are all agreeing on this, but how do we arrive at that?
0: Vivek se mila hua to mat kahiye, ye zyada
4: you are not, because you are not putting universities on the dock there. What do you mean by you are agreeing to it? You are not agreeing to it.
5: अगर आप ये गारंटी कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी गारंटी करेगी, यू मस्ट, वी आर गोइंग टू गिव एन अकोमोडेशन, टेक इट, दे माइट मेक इट एक्सपेंसिव, विल द गवर्नमेंट सब्सिडाइज इट फॉर द स्टूडेंट? सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा स्टूडेंट को?
4: यूनिवर्सिटी
5: कम्युनिस्ट है, हम तो कहेंगे सब्सिडाइज करो और बच्चे की कस्ते।
1: ओके, आई वांट टू गेट अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स। यस, गो ऑन मैम।
6: Yes, sir. I'm just way curious to know that why are local banks and the insurance companies still financing and insuring the buildings that are not legal and they are not approved by MCD approval plans too?
0: आपको सिर्फ मैं जानकारी के लिए बताता हूँ, इनमें से किसी को बैंक फाइनेंस की जरूरत नहीं।
1: पूरा इलीगली बन रही
0: है। कौड़ियों के नाम पर जमीन ली है, एक कमरा बनाया, 5 कमरा बनाया, उसके पैसे से 2 कमरा बनाया, फिर 4 कमरे बनाए और 3 मंजिल की इजाजत पर 5 मंजिल। ये सीधे सीधे करप्शन, ये जो अथॉरिटी है उसका अपना काम ना करना, सीधे सीधे उसका मसला है और कुछ है।
5: दिस इज लालडोरा और विलेज और या रीसेटलमेंट कॉलोनीज में बनते हैं, इनकी रजिस्ट्री नहीं होती, इस पे बैंक फाइनेंस नहीं होता, इस पे पावर ऑफ अटॉर्नी से वो आपके नाम पे ट्रांसफर करेगा। अभी सरकार ने उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस लाई है, विच आई I feel was the good.
1: Like what happened in Satya

0: वो तो बहुत बुजुर्ग हैं, 80 प्लस के हो चुके आनंद रंगनाथन, मैं तो अभी जेन जी अपने को मानता हूँ, तो अगर इन्होंने करना होता इस जनरेशन ने कर चुके होते, फेल जनरेशन है, और हमने अपने मुल्क को कगार पे ला करके हर सब बर्बाद किया है हमने।
1: विवेक जी जो फेल
0: जनरेशन से उम्मीद है, आपकी जनरेशन से उम्मीद है,
2: डिस्क्लेमर,
3: मिस्टर मोदी
2: हमने सब बर्बाद किया है, हम नहीं, हम सक्सेसफुल,
1: एंड इट्स वेरी इजी टू से फेल जनरेशन। सर, दिस जनरेशन हैज सीन,
0: हम बड़े सक्सेसफुल हैं,
1: दिस जनरेशन,
0: रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है दिल्ली शहर,
1: ओके, दिस जनरेशन हैज,
0: हम बड़े सक्सेसफुल हैं,
1: यस, सो दिस जनरेशन हैज सीन मल्टीपल पार्टीज व्हिच हैव बीन इन गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन दिल्ली।
0: आप भविष्य है, खड़े होइए, देशकारिए, और जो ना सुने पॉलिटिकल पार्टी उतार के फेंकिए।
1: ओके, वेरी क्विक,
0: नहीं कर पाए आप करिए।
1: आई वांट टू गेट मोर पीपल टू स्पीक अप, बताइए।
4: मेरा ये कहना है, आप लोगों को शर्म आती है पहले बताइए।
0: मुझे आती है,
4: आती है तो ये बताइए, आप कह रहे हैं एमसीडी ने नहीं ये नहीं किया या उसने नहीं किया, लेकिन आप, अगर आपका बच्चा होता, आप उसको पहले से पता होता उसको प्रॉब्लम हो रही है, आप कंप्लेन करते, मान ले आप, मान लीजिए आप कंप्लेन भी करते, तो क्या आपका रिस्पॉन्स, क्या लोग आपके साथ कॉर्पोरेट करते, नहीं करते, लेकिन सब यूनिटी से करते हैं तभी वो कॉर्पोरेट
0: होते। बिल्कुल सही कहा, शर्म आती है या नहीं,
2: सबको शर्म के चक्कर में आपकी बेशर्मी को सब पे क्यों डाल दिया,
4: आप लोग
2: कहा नहीं था, हमने तो कहा नहीं,
4: हमें प्रॉब्लम हो रही,
2: ये तुमने शर्म के चक्कर में, इन्होंने ये कहा, इनकी बात तो तुमने सबको शर्म से जोड़ दिया, बोलने से पहले सोचना चाहिए ना, यूथ को और सोचना चाहिए।
1: अरे सर, आप माइक पे तो बोलिए।
0: हम बेटा तीनों चारों समेत इस दुनिया में जितने मिडिल एज्ड बैठे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, उनमें से किसी को शर्म नहीं आती, हमसे किसी को शर्म नहीं आती, हमने तुम्हें खराब भविष्य दिया है, हमने तुम्हें डोनेशन वाले कॉलेज दिए।
4: जब प्रॉब्लम हो जाती है तब आप सॉल्यूशन बताते हैं, जब प्रॉब्लम हो जाती है तभी आप सॉल्यूशन बताते हैं, क्या उससे पहले प्रॉब्लम नहीं हुई? अभी कोटा में बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है
2: वो भले आइडियल सजेशन हो, प्रैक्टिकली लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, लेकिन ये हर कोई चाहता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपको हॉस्टल के साथ एकोमोडेशन अगर रूल्स रेगुलेशन होते तो हम आज इसकी बात नहीं कर रहे थे। उनको कोई बहुत अच्छा सा घर, और अपने घर में हम जैसे कमरों में रहते हैं वैसे तो हॉस्टल में भी नहीं मिलते, हॉस्टल में दो बेड होती है, मैं तो हॉस्टल भी जानता हूं, डेलीगेसी भी जानता हूं। असली चीज क्या है, आपको ढंग की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ढंग की लोकेलिटी में ढंग का कमरा पढ़ने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये असली इशू है।
1: एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, वी कैन गो अराउंड इन एवरी डायरेक्शन डॉक्टर रंगनाथन, बट द फैक्ट इज इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, regulation and enforcement, and then we go on to the next step where everyone should be provided government accommodation if possible. Dr. Ranganathan.
5: Padmaja, you know, I want to pass a privilege motion against your Sansad because mere ko sabse kam time mila hai. Dekhiye, what again, you are also falling into the trap that has been set by these three panelists out here. Ki we should follow regulation. We should have this. Aray bhai, 40 saal se toh tha na aapke paas sari multiple sarkare. Kar liya aapne.
0: Usme 40 saal mein.
5: Arab logon ko pakad liya aapne.
0: Aap bhi 40 saal mein the isi देश में सर। अरे विवेक जी, के पार्ट है सर,
1: इसीलिए मैं आपको माइक नहीं देती हूँ, नीचे कर लो ना थोड़ी देर, जब माइक होता है माइक में बोलते नहीं हो, जब माइक मिलता है तो चिल्लाते हो, बोलो। हाँ
5: पद्मजा जी, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ इसलिए पाया क्योंकि मेरे को हॉस्टल दिया सरकार ने। ये विवेक जी डफली स्टडीज, डफली ऑनर्स, पता नहीं कहाँ से पढ़ा, हो सकता है इसलिए ये पढ़ नहीं पाए क्योंकि ये सड़क पे थे या कहीं पे भी थे, डंजन में थे। पॉइंट इज, एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए डिग्निफाइड वे ऑफ एजुकेटिंग। अगर वो हम नहीं करेंगे तो जो उड़ीसा से आए, आप उनको एक बार दोबारा लाइए, माइक दीजिए उनको, वो 20,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, ना उनको खाना मिल रहा है, 10 लोगों के साथ रह रहे हैं, ना टॉयलेट मिल रहा है, क्या ये डिग्निटी एजुकेशन की? अपने बच्चों को तो पढ़ा लिया और अपने सारे नेताओं दोस्तों को इलीगली सैनिक फार्म में रखा हुआ है, कह रहे हैं कि नहीं हम ढोएंगे इलीगल स्ट्रक्चर। बंसल अभी तक ढोया आपने? अभी तक इलीगल स्ट्रक्चर मणि शंकर अय्यर जी को वहां से ट्रांसफर करवाइए।
3: पहले
1: Let me ask this young man, what do you want to make your life better? Today you're living in Delhi paying 20,000. Tell me, what is that one thing you want to be done over the next few months?
6: मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एक्सपेक्ट अ लॉन्ग टर्म प्लान, बिकॉज मैम प्लान्स मतलब बना लिए जाते हैं बट इन पे काम नहीं होता है। इवन मैम पीपल भी बहुत इग्नोरेंट है हमारे सोसाइटी में, वो लोग ध्यान नहीं देंगे, उनको तब पता चलेगा जब मैम लाइक जब मोहल्ले में चोरी होती है तब हम लोग मतलब सतर्क होते हैं। तो मैम वही वाला है मैम, इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस, हम खाली गवर्नमेंट से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मतलब सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, हमें अपने साइड से भी करना चाहिए। मैम प्रोटेस्ट इज नॉट द ओनली वे मैम, क्योंकि प्रोटेस्ट से क्या होगा मैम, इट विल बी वन मंथ, उसके बाद क्या है, अभी हम बात भी नहीं करेंगे.
1: The government needs to get its fundamentals right and not wait for somebody to hit the street only in order for the government to do their job. That is not the way democracy functions. Yes, go on, young lady.
3: As you all are focusing more on how Gen Z should bring all these matter to limelight, do you think that every other month the Gen Z has to come on the roads to bring these topics on the limelight?
1: Exactly. Just yeah, because padhne aayenge ya fir aapke liye jantar mantar pe baithe rahenge?
7: Nobody is suggesting this.
1: Go on.
8: Sir, matlab har bar systemic failure ka matlab bacche hi kyun hote hain? Matlab bas main yahi puchna chahta hu. Har bar matlab koi bada incident hoga aur bacche jab marenge tabhi wo systemic failure ke baad hi wo resolve honge matlab cheeze.
2: Okay. ये मुझे लगता है ना कि कई बार हम लोग किसी बात की, चूंकि बच्चों की बहुत सी बात हो रही है, छात्रों की, मुंबई की चौल में सामान्य आदमी गिर के बिल्डिंग मर जा रहा है, दिल्ली में बिल्डिंग्स गिरती हैं, जो लेबर फोर्स होती है, जो लेबर आ रहा होता है वो मर जा रहा होता है. ये सबकी लाइफ और सबकी डिग्निटी का सवाल है.
1: yes.
2: हम लोग इस बहाने ये बात कर रहे हैं चूंकि बच्चे हैं, इसलिए हम लोग को लग रहा है कि इस वक्त ये बात हो रही. ऐसा नहीं है कि दूसरी बिल्डिंग जो है वो सेफ है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ब्रॉडर इस इशू को देखना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि आपकी बिल्डिंग से. और मैंने तो बहुत बड़ी बात कही, विकसित भारत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो इस देश में कोई भी बिल्डिंग इस तरह से नहीं गिरनी चाहिए. एक लाइन की बात है, उसमें बच्चे, बड़े, लेबर, कोई बड़ा अधिकारी, इसका कोई मतलब.
1: एंड आई थिंक देयर इज वन थिंग दैट एवरीवन सिटिंग हियर एग्रीज अपॉन. People have the right to live with dignity, irrespective of whether you are Gen Z or whether you are 100 years old, whether you're living in a hostel or a PG or in your own house. But how do you make that happen? Should it require for somebody to hit the streets, to go to Jantar Mantar, to start an agitation, to go to court, or to just expect that the government, the representatives that we vote in, are simply doing their job? And that is possible only when they are held accountable day on day. It's not enough to make reels and say that we are clocking it. It is important that if you really want to understand the grammar of Gen Z, you make sure that this Gen Z is alive, safe, and studying with dignity. Thanks very much to this wonderful group of people who have joined us here and to our experts. And a very angry Professor Ranganathan. Hopefully, we will see these reforms happen sooner rather than later. Thanks very much for joining us on People's Sansad. Because remember, when it really matters, the buck stops here. Thanks for watching.

0: and maybe one wardrobe. Do you know most of these kids do not even have an independent toilet? You end up paying 25,000 rupees and you have to share a toilet with somebody else. 10,000 rupees per month for one bed, and this is exclusive of food. You have to pay extra for food. Why you keep coming? Because this is close to a metro station. You think that you will save on fuel because you can just walk it to college. A lot of children now want to jump in over here. Yes, go on, ma'am. What do you want to say?
1: Ma'am, my very first thing is ki ye bana, who is responsible, if you are asking, each and every political party who was there, each and every representative jo humne dekha hai, in the past 20 years, 30 years, 50 years, jab se wo building khadi hai, wo kitne saalon se khadi hai, each and every person is responsible for this. Be it MCD inspectors jinhone is cheez ko approve kiya, bureaucrats who have approved this, or politicians jinhone dekha hai is building ko bante hue. And second thing is, ki Delhi University institution ki hum log baat kar rahe hain, 3 lakh bacche दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 1600 करोड़ का फंड दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है, तो और आज हॉस्टल्स कितने हैं, 4% बच्चों को हॉस्टल्स मिल रहा है, 5,000-6,000 हॉस्टल्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त, और हम कह रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है. जनता जागरूक कैसे नहीं है सर? जनता जागरूक है. एक बच्चा जो कि 18 साल का है, अपनी फैमिली उसकी आई है, वो डिग्री पे ध्यान देगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, या वो जा करके ये देखेगा अगर कोई चीज़ है वो ब्रॉड डेलाइट में ऑपरेट कर रही है, तो फिर हाउ डू वी से कि एक बच्चा डिग्री पे ध्यान दे या फिर जाकर के वो रूम देखे?
2: बिल्कुल ठीक है आपने. आपका पीजी हवा में तो नहीं लटका हुआ. आपका जो पीजी है दैट इज द रेजिडेंशियल कॉलोनी, उसमें लोग हैं आसपास, उसका RW है, वो बिल्डिंग कैसे बनी, उसमें पीजी कैसे रन करा? आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्टूडेंट, आई एम ब्लेमिंग द रेजिडेंट्स ऑफ सत्य निकेतन.
1: सर जब हम अब सवाल पूछ रहे हैं तो व्हाई आर वी बीइंग पुश्ड डाउन?
2: No, you are not being pushed out. I am telling you the dark reality. यहाँ तो आप PG में आ गए, जहाँ से आते हो वहाँ भी यही हाल है.
1: सर तो ये सवाल हम पूछे जाकर के PG owners से, या हम पढ़ाई पे ध्यान दें?
0: One second. Okay, Dr. Nathan, 30 seconds, then Harshvardhan.
3: No, not even 30 seconds. I will give you an analogy. What would you call a hospital that keeps on admitting patients without adequate beds for them? That is exactly what is happening. The universities keep on admitting students without giving them proper accommodation. They are worried how the lady is absolutely right. How can you study when you are given such, to be packed like sardines in an accommodation that is worse than a slum?
0: So, Harshvardhan ji, ye bataiye ki sirf 4% logo ke liye jab hostel hai, to phir college pe college kyun banaye ja rahe hain? Why can't all of them be given hostels or residences as well?
4: पंजाब, मुझे लगता है थोड़ा सा रियलिस्टिक जो अप्रोच है उससे आनंद भी आज मैं उनसे पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ, और विवेक भी वही काम कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बच्चे ही सेल्फिश हो गए, सोसाइटी ही सेल्फिश हो गई,
2: बच्चों के बाप सेल्फिश थे.
4: अरे एक मिनट,
2: जब खड़े होकर के गलत MP MLA कॉर्पोरेटर बिठाओगे सर पे देश के, अजीब से मंत्री बीए पास, तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर है.
4: आपकी समस्या क्या है? आप ये समझते हैं कि किसी भी इशू पर कम्युनिस्टों को कुछ बोलने का, कुछ ऐसा बोलने का मिले जिससे उनको पॉलिटिकली लाभ हो जाए, लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि आप कुछ करते नहीं है. आप कुछ करते नहीं है. मूल मुद्दे पे बात करने दीजिए. जो आनंद कह रहे हैं आइडियल, उसको देखें तो बड़ा अच्छा है. सबको हॉस्टल मिलना चाहिए, सबको गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अप्रूव होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता. और मैं जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे 90 के दशक में, हॉस्टल होते थे, और उसके अलावा जो अलग अलग मोहल्लों में होते थे उनको हम लोग डेलीगेसी कहा करते थे. उनके भी बाकायदा जब वहाँ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते तो डेलीगेसी से भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते, तब वो छात्र संघ बनता था. एक तो देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ नहीं है, या छात्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है. JNUDU में है छात्र संघ, लेकिन छात्र संघ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है. वरना सभी छात्र संगठनों को, सभी छात्र संघों को क्या यह पता नहीं है कि इस तरह की बिल्डिंग में बच्चों को ऐसे रहना पड़ा है? नंबर वन. नंबर टू, जो सबसे जरूरी बात है, जैसे हम लोग जो ध्यान में है, एक मंजिल दो मंजिल का बना, उसको ईंट की इमारत बनती थी और उस पर आके लोग रहते थे, बच्चों को सस्ते में मिल जाता था, इसलिए डेलीगेसी में चले जाते थे. यहां भी वही होता है, साउथ कैंपस के नजदीक था वो, लेकिन उसके ऊपर बिना किसी पिलर के 1, 2, 3, 4, 5 और सारी सरकारें बेशर्मी से, बेहयाई से देखती रही. वो कैसा वो MCD का कमिश्नर है जिसको अपने से इस्तीफा देने का मन नहीं हुआ? वो कैसा इंस्पेक्टर है जिसकी हाथ से कलम चली होगी कि नहीं नहीं ये ठीक है? और उससे आगे मैं उसी में एक किसी को सुन रहा था, चूंकि मैं तो वहां गया नहीं, किसी को मैंने सुना कि यहां MCD 15 दिन पहले नोटिस लगा के गई कि ये रहने लायक नहीं है, लिवेबल नहीं. उसके बावजूद वो आदमी जो जिसके ऊपर सीधे सीधे अपराध मामला दर्ज होना चाहिए गैर इरादतन हत्या का, उस आदमी ने वहां पर लोगों को कमरे किराए पर दे दिए.

0: वी स्टार्टेड एंड यू योरसेल्फ सेड कि हमाम में सब नंगे हैं, सो वी कैन नॉट पॉइंट आउट दैट व्हाई
1: यू हैं नंगे, उनको कॉल आउट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो कपड़े पहनेंगे.
0: दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन नॉट सिंगल आउट एनी पर्टिकुलर पार्टी फॉर दैट.
1: यू शुड सिंगल आउट ऑल
0: ऑफ देम. दैट्स व्हाट माय सबमिशन इज. एंड एन इंसिडेंट लाइक दिस हैड हैपेंड अर्लियर व्हेन दिस इन द कोचिंग क्लास दिस वाटर लॉगिंग.
1: ऑफ कोर्स
0: आई थिंक दैट वाज अ टाइम व्हेन द alarm should have been raised by the CM. What the CM has,
1: but
0: Delhi,
1: was it
0: Delhi
1: raised,
0: CM
1: sir?
0: Had to say.
1: Uske baad kya hua?
0: She is literally rebuking the students for that. She is not ready to take the blame. She is not ready to say that we should have woken up much earlier.
1: Okay, Harshvardhan ji, then Dr. Ranganathan.
2: Vijay ji, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या illegal कब्जा करने वालों के पक्ष में अदालतों में जाने वालों को अदालतों को बर्दाश्त करना चाहिए?
3: इल्लीगल किसे
2: असली
3: कहते?
2: सवाल जो है
3: इल्लीगल किसे कहते?
2: अगर आप इंक्रोचमेंट करेंगे और उसके बाद अदालत जाके वहां से स्टे लेके आ जाएंगे और नेता वहां पहुंच जाएंगे बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे, तो जब बच्चों की जान चली जाएगी तब आपको लगेगा यार ये तो इल्लीगल था. आपने अगर झुग्गियों को उनको स्लम को कह दिया कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, दिल्ली की सारी ऐसी कॉलोनी हर जितने शहर है कम से कम अर्बन एरिया को रेगुलराइज करके, और मैं कह रहा हूं अगर 500 गज का उसने लीगल एनक्रोचमेंट कर रखा है, 250 गज को आप
1: अरे वही बुलडोजर्स रन बिलेटेडली
3: पॉलिटिशियन के टूटने के विरोध में हो,
2: पुलिस नहीं जा सकती, और उस इलाके में अगर आप करें तो विकसित भारत ऐसे नहीं बन
1: सकता.
2: फिर करो डिमोलिशन करिए. यूपीए के समय में अगर कोई कानून आ गया रोकने की कोशिश हुई, ये भला नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा.
1: एंड पॉलिटिशियंस गो एंड स्टैंड इन द वे ऑफ बुलडोजर्स.
3: Of course, yes,
1: when
3: we
1: those
3: should.
1: bulldozers we try should. and bring down the illegality, that's the problem.
2: आप ये गरीब,
3: आपका बुलडोजर सिर्फ
2: अरे वो गरीब है, वो गरीब है जिसने 5 मंजिला मकान के बच्चों का खून चूस लिया, बच्चों का खून चूस लिया. आप कैसी बात कर रहे हैं
1: विवेक जी, एक सेकंड,
2: कैसी बात कर रहे हैं? 5 मंजिला की बिल्डिंग रख के बच्चों का खून चूस लिया, आप कह रहे हो गरीब है?
1: ओके, लेट्स नॉट शाउट मिस्टर श्रीवास्तव. आई विल टेल यू, देयर आर कोठीज इन दिल्ली
2: व्हिच आर वैल्यूड
1: ओवर एंड अबव 400 crores.
3: यस, मैं
1: those people have yes. gone and got a stay from court.
3: Yes.
1: ये कोई गरीब नहीं है.
3: जी.
1: They are squatting illegally on land and वहाँ bulldozer चलना चाहिए.
3: मैं सुना
1: तो गरीब पे अमीर पे छोड़िए, bulldozer हर जगह चलना चाहिए.
3: वो नहीं टूटेगा. छतरपुर फार्म्स इल्लीगल एरिया है, वो नहीं टूटेगा. आप ट्रेन लेके, बस लेके, कार लेकर के जाइए छतरपुर से गुड़गांव, नेशनल हाईवे, दोनों तरफ एनक्रोचमेंट, बड़े बड़े फैशन के आउटलेट्स, इंटीरियर आउटलेट्स हैं, नहीं टूटेंगे. इनको सिर्फ गरीब की झुग्गी दिखती है. दूसरी बात जब एक आदमी दिल्ली शहर में, एक मिनट
2: देश में हो
1: जाएगा,
3: ऐसा नहीं है सर. अब आप सुनिए, ये लेबर क्लास में हंसने वाले लोग, असलियत यह है, एक गरीब आदमी दिल्ली शहर में
2: आते हैं
3: जब घर बनाता है, एक डोंट इंटरप्ट मी,
2: तो ठीक रही है. आई डोंट
3: वाई यू इंटरप्ट
1: मी, वन एट
2: अ टाइम.
1: हर्षवर्धन,
2: उन बिल्डिंग वालों के लिए, उन बिल्डिंग वालों के लिए क्यों खड़े हो रहे हो? बच्चों के लिए खड़े हो जाओ ना, बिल्डिंग वालों के लिए मत खड़े हो, बच्चों के लिए खड़े हो जाओ.
1: फिनिश योर पॉइंट.
3: मैं, एक गरीब आदमी दिल्ली शहर में आता है, दिल्ली के नागरिक और बाकी मेट्रोज के नागरिक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं घर बनाना कितना महंगा है. पहले वो बेचारा देखता है यहाँ मैं घर बना सकता हूँ, हाँ या ना. एमसीडीवी वाला आता है, कहता है कोई बात नहीं साहब, थोड़ा पैसा तो बना लो, बाकी उन्हें बना रखा है. वो घर बनाता है, उसके बच्चे पढ़ने लगते हैं, रहने लगते हैं. 10 साल बीतता है, 20 साल बीतता है, 30 साल बीतता है, 40 साल बीतता है, एंड ही स्टेइंग बिकॉज ही वॉज अलाउड टू स्टे.
2: 40 साल से
3: ये सरकार शालीमार बाग को तोड़ती है.
2: पिछले 40 साल से सरकारें ऐसे ही इल्लीगल बस्तियां बसा रही
1: हैं और जिंदगी
2: खतरे में डाल रही हैं.
3: उसको कॉम्पेंसेशन कौन देगा?
1: What
3: जिसका घर आपने बसने दिया फिर तोड़ा?
1: What Vivek Srivastav seems to be suggesting is that in the name of removing illegal construction, the bulldozers will roll selectively over the weak and the poor's houses. The rich and connected will be spared. Dr. Ranganathan.
4: Padmaja, please give me a couple of minutes because you'd asked me to come in 5 minutes ago and this is the reason why Vivek comes to the studio because he can't be faded out. Yahan pe cheekte chillate rehte hain, ab inko fade out.

0: है कि गवर्नमेंट को एक ऐप बनाना चाहिए जिसमें पीजी ओनर और स्टूडेंट दोनों रहें, और उसमें ये बताया जाए कि कौन सा पीजी इलीगल है, कौन सा लीगल है, किस पीजी को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, कौन से पीजी में अच्छा पानी आता है, क्योंकि दिल्ली में हम क्लोरिनेटेड वाटर पीते हैं। दिल्ली से जब हम अपने घर से आते हैं तो बाल लेके आते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो बाल झड़ जाते हैं।
1: तो आप कह रहे हैं कि इसका रेगुलेशन होना चाहिए और इसको एक जगह पे इट शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज दिस इंफॉर्मेशन। नाउ इंसिडेंटली अ बिगिनिंग, एटलीस्ट वी आर टोल्ड दैट अ बिगिनिंग फॉर दैट हैज बीन मेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द पीजी रेगुलेशन लॉ। Imagine, and I agree with this young man. You know, he said that first you have to have a series of these tragedies for somebody to wake up and say, oh, we need to have a regulation law. Imagine all of this while, why wasn't this regulation done? Has anyone thought about it? Has anyone asked that question? What are the proposed provisions? Now the proposal is being made. A mandatory PG registration within 90 days, a unique registration number for every PG. Delhi police and MCD clearance is going to be mandatory. Imagine, this clearance wasn't even mandatory all of this while. A GOV PG portal for verified listing of PGs, exactly what this young man is talking about. CCTV coverage at entrances, common areas, licensed night guard for PGs with 15 plus students. Area-wise rent bands to be set by a panel. So there is going to be regulation of how much rent should be charged. 30-day written notice before eviction and strict action on non-compliant PGs. And that's why I ask Harshvardhan ji. Aap sochiye, ye ladka yahan par bol raha hai ki hume ek app karna chahiye. Ab ja karke LG ne meeting ki aur unhone kaha, arre hume ek portal karna chahiye. Itne saalon se ye portal to ho jana chahiye tha na?
2: Padmaja, jitne isme proposed suggestions hain, regulations hain, wo sab in place hain. MCD एक ईंट रख के देखिए, आपको बताएगी कि MCD होने का मतलब क्या होता है। और कोई कहेगा कि वहाँ के कॉरपोरेटर को पता नहीं होगा, और हमारे ये नौजवान साथी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन बुलडोजर किस संदर्भ में आप देख रहे हैं? अगर आपको रेगुलेशन करना है, कोई इलीगल स्ट्रक्चर है तो उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर ही लगेगा। सवाल यहाँ ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि जो इलीगल ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, उनको हम तोड़े तो फिर। और दूसरा, वो कोई बगल का पड़ोसी नहीं करेगा, वो झगड़े करने के लिए नहीं आएगा, वहां के लिए बाकायदा अथॉरिटी है, उनके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ, वो काम नहीं कर रहा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो उस इलाके में जितनी इलीगल बिल्डिंग है एक बार टूटनी चाहिए। वो सालों से बच्चों से खून चूस रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सेफ स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे। और मैं एक बात कहता हूं जो थोड़ा समझ में आए, दिल्ली में इतने लोग रहते हैं, आनंद को शायद, चूंकि प्रोफेसर साहब है, लंबे समय से मुझे भी मिला हुआ बता दिए, तो मैं तो सोल्यूशन ही दिया, वो शायद उस तरह से पढ़े नहीं है। हम जो डेलीगेसी की बात करते हैं, हमारा इलाहाबाद में घर था, हम थोड़ी ना हॉस्टल लेंगे। हम अगर उतने एकोमोडेशन जो दिया जाता है, किसी भी आइडियल से आइडियल कंडीशन, वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता कि सारे के सारे हॉस्टल में रहेंगे। जेएनयू के बगल में पूरा मुनीर का गांव है जो बसा हुआ है, जिसमें सब बच्चे रहते हैं। डीयू तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, अगर वो कॉलेज बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, हम एक ना गाड़ी के आगे काट रख देंगे, ना ना हॉस्टल नहीं बनेगा तो पढ़ने नहीं देंगे, ये तो रिग्रेसिव हो जाएगा ना। जरा ये भी सोचना चाहिए, बिल्कुल उसको रेगुलराइज करिए, अच्छे से अच्छा उसको डिग्निटी दीजिए स्टूडेंट को, लेकिन ये कहना कि ना हॉस्टल नहीं होगा तो सब बंद कर दो, ये आंकड़ों की ये ठीक नहीं।
1: यू हर्ड प्लेंटी ऑफ स्टोरीज ऑन सत्यनिकेतन, देयर आर मोर स्टूडेंट्स हियर हु लिव इन हॉस्टल्स, आई वांट टू गेट अ फ्यू ऑफ देयर स्टोरीज इन जस्ट अ सेकंड। आप पीजी में रहते हैं?
3: Yes,
1: कहाँ है आपका पीजी और किस तरीके का है बताइए।
3: जी टी बी मेट्रो में है, लाइक नॉर्थ कैंपस के पास में। सर लाइक जब मैं दिल्ली में आया था तो लाइक आई कम फ्रॉम उड़ीसा, तो स्टार्टिंग में मुझे पीजी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ था। मतलब पीजी क्या, लाइक आई अप्लाइड फॉर हॉस्टल, दो तीन महीने तक हॉस्टल पे कुछ अपडेट्स नहीं आती। तो सर ऑल दो मेरे रिलेटिव्स रहते थे तो मैं उनके घर में दो तीन मंथ रुक गया था, तो इट वॉज़ फाइन फॉर मी। पीजी सर आप देखने जाएंगे, आप देखेंगे हर जगह का अपना अलग अलग रेट है। मैं साइड वाले पीजी में देखूंगा, उसमें पहले 7 दिन अच्छा खाना दे देंगे, फिर खाने का क्वालिटी बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा। सर आई गो टू एरिया जहाँ पे मेरे दोस्त लोग रहते हैं, जैसे देर इज़ मलकागंज वगैरह, वहाँ पर देखेंगे सर मतलब एक घर के ऊपर उन्होंने पूरा जैसे मॉन्यूमेंट जैसा पूरा खड़ा कर दिया, मतलब जस्ट टू पुट, मतलब और बच्चे उसमें रहे। तो सर ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड सर मतलब ये बिल के
2: रेगुलेशन जरूरी है।
1: कितना yes. कितना पैसा देते हैं आप हर महीने?
3: सर इट इज 15,000।
1: 15,000?
3: यस मैम।
1: एंड प्लस यू पे एक्स्ट्रा फॉर फूड आल्सो?
3: मैम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल।
1: एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो यू एंड अप पेइंग अबाउट 15,000 to 20,000।
3: 18 to 20 इज द लाइक।
1: और घर के मुकाबले आपको पीजी उतना ही बड़ा है जितना घर में कमरा हुआ करता था?
3: मैम इट इज लाइक वन
2: बेड होती है, वहां कमरे नहीं होते।
3: यस मैम,
2: वो तो बेड होती है आपकी, 2, 3, 4 ऐसे ही होता है।
3: यस मैम।
1: तो यानी कि
2: सिंगल ले रहे हैं तो
1: बेड का 15,000 रुपए दे रहे हो?
3: यस मैम।
1: घर पे अपना खुद का कमरा था, यहाँ एक बेड में रह रहे हैं 15,000।
3: मैम टू बी

0: नेक्स्ट आपको ओडिशा में उससे बड़ा घर मिल जाएगा एट द हाफ द रेट, मतलब लाइक यू विल गेट 2 to 3 BHK, मतलब 15-20,000 में, लाइक द होल हाउस इटसेल्फ.
1: यू गेट द फूड अलोंग विद इट?
0: यस सर.
2: 15 to 20,000 दिस बॉय वुड हैव गॉट ऑन रेंट इन हिज हाउस. यस डॉक्टर रंगनाथन, गो ऑन.
3: मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं हर्षवर्धन जी मेरे मित्र नहीं मेरे भाई हैं, कि ये सारे इंडियंस, मैं दोबारा कह रहा हूं, लॉजिक और रैशनैलिटी कहां चली जाती है? आप सिर्फ बिल्डिंग की सेफ्टी की जरूरत नहीं है, एक काल कोठड़ी भी सेफ हो सकती है. टॉयलेट अगर 100 लोग सेफ यूज कर रहे हैं उसको भी आप सेफ कह सकते हैं. वेर इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन?
4: मैंने कहा नहीं,
3: आई कैन नॉट. हर्षवर्धन जी ये बहुत, आप ऐसे नहीं थे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर हैज टू बी एजुकेशन हैज टू बी डिसेमिनेटेड विद डिग्निटी. Even if you are staying in a safe building, it is not dignified for us 10 students to be sharing one tiny cubicle room without any food, without any dignity. ये समझ में क्यों नहीं आ रहा?
2: So Anand, Anand, I think.
4: मैं इतनी देर से वही कह रहा हूँ.
2: Anand, I think we are all agreeing on this, but how do we arrive at that?
4: विवेक से मिला हुआ तो मत कहिए, ये ज़्यादा.
3: You are not, because you are not putting universities on the dock there. What do you mean by you are agreeing to it? You are not agreeing to it.
5: अगर आप ये गारंटी कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी गारंटी करेगी, यू मस्ट, वी आर गोइंग टू गिव एन अकोमोडेशन, टेक इट, दे माइट मेक इट एक्सपेंसिव, विल द गवर्नमेंट सब्सिडाइज इट फॉर द स्टूडेंट? सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा स्टूडेंट को?
3: यूनिवर्सिटी
5: या कम्युनिस्ट है, हम तो कहेंगे सब्सिडाइज करो और बच्चे की कस्ते.
2: ओके, आई वांट टू गेट अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स. यस, गो ऑन मैम.
6: Yes sir, I'm just way curious to know that why are local banks and the insurance companies still financing and insuring the buildings that are not legal and they are not approved by MCD approval plans too.
7: आपको सिर्फ मैं जानकारी के लिए बताता हूं, इनमें से किसी को बैंक फाइनेंस की जरूरत नहीं.
2: पूरा इलीगली
7: बनी नाम पर जमीन ली है, एक कमरा बनाया, पांच कमरा बनाया, उसके पैसे से दो कमरा बनाया, फिर चार कमरे बनाए और 3 मंजिल की इजाजत पर 5 मंजिल.
5: These are not
7: ये सीधे सीधे करप्शन. ये जो अथॉरिटी है उसका अपना काम ना करना, सीधे सीधे उसका मसला है और कुछ ये है.
5: दिस इज लालडोरा और विलेज और या रीसेटलमेंट कॉलोनीज में बनते हैं, इनकी रजिस्ट्री नहीं होती, इस पे बैंक फाइनेंस नहीं होता, इस पे पावर ऑफ अटॉर्नी से वो आपके नाम पे ट्रांसफर करेगा. अभी सरकार ने उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस लाई है, व्हिच आई फील वाज द गुड.
2: लाइक व्हाट हैपेंड इन सत्यनिकेतन, दिस वाज अ जेजे कॉलोनी एंड इट वाज मेंट टू हैव ग्राउंड प्लस 2, बट व्हेन नोबडी वाज लुकिंग ऑन, व्हेयर एवरीवन वाज लुकिंग, इन अ जेजे कॉलोनी यू हैव 5-6 stories बीइंग बिल्ट, सो नोबडी टेक्स अ लोन, इट जस्ट गेट्स बिल्ट. यस, गो ऑन.
8: टॉकिंग अबाउट एमसीडी ऑफिशियल्स, देयर आर 2 MCD ऑफिशियल्स अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट, दे वर आल्सो इन्वॉल्वड इन द मालवीय नगर फायर.
5: यस,
8: एंड दे आर नाउ सस्पेंडेड, जस्ट सस्पेंडेड. व्हाई वाजंट एनी एक्शन टेकन व्हेन द फायर इंसिडेंट हैपेंड?
5: सो दैट इज
8: आर वी वेटिंग फॉर न्यू इंसिडेंट्स टू
5: अकर? आई बिलीव आपकी गलती है, मैं इसलिए कह रहा था दैट वी मस्ट पुट द प्रेशर ऑन एवरी गवर्नमेंट व्हाट एवर बी द पार्टी. और ये एडवोकेट्स आप बैठे हैं, हमें कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहिए, हमें पार्टीज पे प्रेशर डालना चाहिए, हर स्टेट के अंदर कानून बनाओ, अगर ऐसा हादसा होगा उसको बनाने वाला वो, उसको साइन करके अथोराइज करने वाला वो एमसीडी का अफसर, चाहे रिटायर होकर घर में बैठा हो, उसको पकड़ो और जेल में डालो. टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, दैट इज मिसिंग इन दिस नेशन. ये पैसे और कंपल्सरी करने से हॉस्टल को कुछ नहीं होगा, इनको डंडे मारो, तब सुधरेगा ये मुल्क. और उसके लिए आपको, जनता को, आप जेंजी हैं, हम नहीं कर पाए, हम फेल हो गए, आप हमारी तरह फेल ना हो, आप खड़े होकर के अपने वोट की ताकत को एक्सरसाइज करो, सरकारें सही बनाओ, उनसे काम करवाओ.
2: एट द वेरी लीस्ट मिस्टर बंसल, कैन वी बी अश्योर्ड दैट द नेक्स्ट टाइम, इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ डिसाइडेड टू स्टेप इन एंड एड्रेस दिस इशू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज बिल्डिंग्स मशरूमिंग बट ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ पीजीज, नो गवर्नमेंट, नो पोलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू जम्प इन. You know, you had earlier Arvind Kejriwal, a very famous statement of his, where he said ki are a bulldozer kyun chal raha hai, bechare gareeb log kidhar jayenge. The fact is that when these illegal structures are removed, there will be about 80 to 85,000 people who will be affected. So no political party should jump in and say, oh, you know, my voters, now let me go and stand with them.
1: Madam ja, once an atmosphere is, political atmosphere and social atmosphere is built up, a narrative is created like this, no political party would dare to enter into this. Yeah, I'm telling you. I'm
2: sir,
1: telling
2: I
1: you
2: wish.
1: At this moment, come on. Come
2: I
1: on.
2: Wish
1: I'll,
2: that
1: I'll,
2: was
1: no,
2: true.
1: No. I'll just. I'll just.
2: Sir, yeah, Afzal Guru ke liye court karna chahte hain. Aap illegal
3: tarike se baat kar rahe
1: hain. Afzal Guru ko aap.
7: अब रात पहुंच गई थी बुलडोजर के सामने पहुंच गई थी सब कुछ किया
3: लटियंस दिल्ली में रहने वालों को कोई आईडिया नहीं है
1: देयर हैज टू बी यू सी वंस व्हाट हैपेंड What happened in
2: so you're putting the onus on the people ki aap mahol banao.
1: No, I'm not putting the onus on the people.
2: Then the politicians are going to come to heel.
1: Onus on everybody, political parties as well. They have to take the lead. I'm not saying, please, you are always constantly misunderstanding.
3: But have they taken the lead? They haven't. Why would they?
1: I'm saying that definitely Gen Z, what they did in Jantar Bantar, they were able to build, you know, even Supreme Court was compelled to take back the cases.
3: Yes.
1: That's what I'm coming to.
7: Desh mein danga karke, anarchy karke aur cases wapas lena. उसको हम Gen Z की पावर कहते हैं तो सॉरी ये पावर नहीं है
3: आंदोलन
7: ये बहुत खराब दिशा में हम लोग जा रहे हैं इसको नहीं समझ में आ रहा आप उस सीरियस इशू को क्यों उससे कंपेयर कर रहे हैं
2: दिस हैज टू बी डन थ्रू लॉ एंड दिस हैज टू बी डन लीगली नॉट सेइंग दैट Gen Z शुड नाउ सिट एट जंतर मंतर एंड मेक द कोक एक्ट नो
1: एन एग्जांपल दैट वंस अ पॉलिटिकल एंड सोशल एटमॉस्फेयर इज बिल्ट अप अगेंस्ट अ पर्टिकुलर थिंग पॉलिटिकल पार्टीज आर कंपेल्ड टू इनिशिएट ऑन दैट
2: बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन यस
9: हियर मी आउट सर आई थिंक हम थोड़ा इशू कंफ्यूज कर रहे हैं देर आर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड देर आर कमर्शियल प्रॉपर्टीज पद्मजा जी ने बोला अभी कि ये 40 साल से प्रॉपर्टी खड़ी हुई है क्या अगल बगल वालों को नहीं दिखा कि ये 40 साल से प्रॉपर्टी खड़ी हुई है इनफैक्ट आई वुड रेजोनेट विद द कमेंट्स दैट हैव बीन मेड बाय मिस्टर विवेक कि अगल बगल वालों को ही एक्शन लेना चाहिए भाई इफ somebody यू शुड अ पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल शुड गो टू द कोर्ट
7: यू
9: शुड गो टू द कोर्ट
7: बगल का आर्मी कंप्लेंट करके झगड़े करेगा एमसीडी का ऑफिसर पुलिस वाले जल बोर्ड वाले इलेक्ट्रिसिटी वाले वो किस लिए
1: पुलिस कहती है
7: बगल वाला क्यों कंप्लेंट करेगा
2: वेरी नोबल सेंटिमेंट But yes. in real life, the onus should be on the government, the
7: and
2: corporation,
7: and
2: the owner of the building. Not on the poor neighbor. Now the neighbor is going to be put in the dock. तुमने क्यों नहीं बताया कि भैया illegal
7: चल रहा है?
2: Not saying that the neighbor is going to be put in the dock.
10: सर मेरा सीधा सा ये सवाल है कि हम ये चीज़ें पहुँचाए प्रोटेस्ट तक भी क्यों पहुँचा रहे हैं हम क्या Gen Z का वेट कर रहे हैं कि कब वो प्रोटेस्ट करेंगे कब ये सब दंगे होंगे और उसके बाद हम कुछ करेंगे अगर अगर पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहे होते तो ये नौबत ही नहीं आती प्रोटेस्ट करने की
5: मुल्क ने और मेरी ये वो तो बहुत बुजुर्ग हैं 80+ के हो चुके आनंद रंगनाथन मैं तो अभी Gen Z अपने को मानता हूँ तो अगर इन्होंने करना होता इस जनरेशन ने कर चुके होते फेल्ड जनरेशन है और हमने अपने मुल्क को कगार पे ला करके हाँ सब बर्बाद किया है हमने
2: विवेक जी जो फेल
5: जनरेशन से उम्मीद है आपकी जनरेशन से उम्मीद है
7: पद्मजा डिस्क्लेमर
1: मिस्टर मोदी
7: आपने सब बर्बाद किया है जनरेशन है हम नहीं हम सक्सेसफुल
2: एंड इट्स वेरी इजी टू से फेल जनरेशन
5: हां मुझे पता है 70 लाख
2: दिस जनरेशन हैज सीन
5: हम बड़े सक्सेसफुल हैं
2: दिस जनरेशन
5: रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है दिल्ली शहर
2: ओके दिस जनरेशन हैज
5: दिस बड़े सक्सेसफुल हैं
2: यस सो दिस जनरेशन हैज सीन मल्टीपल पार्टीज व्हिच हैव बीन इन गवर्नमेंट
5: ऑल पार्टीज इन दिल्ली आप भविष्य हैं खड़े होइए देशदारी Okay. और जो ना सुने पॉलिटिकल पार्टी उतार के फेंकिए
2: ओके वेरी क्विकली
5: नहीं कर पाए आप करिए
2: आई वांट टू गेट मोर पीपल टू स्पीक अप बताइए
11: मेरा ये कहना है आप लोगों को शर्म आती है पहले बताइए
5: मुझे आती है
11: आती है तो ये बताइए आप कह रहे हैं एमसीडी ने नहीं ये हाँ। नहीं किया या उसने नहीं किया लेकिन आप अगर आपका बच्चा होता आप उसको पहले से पता होता उसको प्रॉब्लम हो रही है आप कंप्लेन करते मान लीजिए आप कंप्लेन भी करते तो क्या आपका रिस्पॉन्स क्या लोग आपके साथ कॉर्पोरेट करते नहीं करते लेकिन सब यूनिटी से करते हैं तभी वो कॉर्पोरेट
5: हो बिल्कुल सही कहा शर्म आती है या नहीं
7: सबको शर्म के चक्कर में आपकी बेशर्मी को सब पे क्यों डाल दिया
11: आप लोग
7: कहा नहीं था हमने तो कहा नहीं
11: हमें प्रॉब्लम हो रही
7: ये तुमने शर्म के चक्कर में इन्होंने ये कहा इनकी बात तो तुमने सबको शर्म से जोड़ दिया बोलने से पहले सोचना चाहिए ना यूथ को और सोचना चाहिए
2: अरे सर आप माइक पे तो बोलिए
5: हम बेटा तीनों चारों समेत इस दुनिया में जितने मिडिल एज बैठे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर
2: उनमें
5: से किसी को शर्म नहीं आती किसी को शर्म नहीं आती, हमने तुम्हें खराब भविष्य दिया है, हमने तुम्हें डोनेशन वाले कॉलेज दिए।
11: जब प्रॉब्लम हो जाती है तब आप सॉल्यूशन बताते हैं, जब प्रॉब्लम हो जाती है तभी आप सॉल्यूशन बताते हैं, क्या उससे पहले प्रॉब्लम नहीं? अभी कोटा में बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है
7: वो भले आइडियल सजेशन हो, प्रैक्टिकली लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, लेकिन ये हर कोई चाहता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपको हॉस्टल के साथ एकोमोडेशन अगर रूल्स रेगुलेशन होते तो हम आज इसकी बात नहीं कर रहे थे। उनको कोई बहुत अच्छा सा घर, और अपने घर में हम जैसे कमरों में रहते हैं वैसे तो हॉस्टल में भी नहीं मिलते, हॉस्टल में दो बेड होती है, मैं तो हॉस्टल भी जानता हूं, डेलीगेसी भी जानता हूं। असली चीज क्या है, आपको ढंग की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ढंग की लोकेलिटी में ढंग का कमरा पढ़ने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये असली इशू है।
2: एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, वी कैन गो अराउंड इन एवरी डायरेक्शन डॉक्टर रंगनाथन, बट द फैक्ट इज इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन regulation and enforcement regulation and then we go on to the next step where everyone should be provided government accommodation if possible. Dr. Ranganathan.
3: Padmaja, you know, I want to pass a privilege motion against your sansad because mere ko sabse kam time mila hai. Dekhiye, what again, you are also falling into the trap that has been set by these three panelists out here. Ki we should follow regulation. We should have this. Aray bhai, 40 saal se toh tha na aapke paas sari multiple sarkare. Kar liya aapne.
5: Usme 40 saal mein.
3: Aray logon ko pakad liya aapne.
5: Aap bhi 40 saal mein the isi desh mein sir. अरे विवेक जी के पार्ट है सर,
2: इसीलिए मैं आपको माइक नहीं देती हूँ, नीचे कर लो ना थोड़ी देर, जब माइक होता है माइक में बोलते नहीं हो, जब माइक मिलता है तो चिल्लाते हो, बोलो। हाँ
3: पद्मजा जी, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ इसलिए पाया क्योंकि मेरे को हॉस्टल दिया सरकार ने। ये विवेक जी डफली स्टडीज डफली ऑनर्स पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, हो सकता है इसलिए ये पढ़ नहीं पाए क्योंकि ये सड़क पे थे या कहीं पे भी थे, डंजन में थे। पॉइंट इज, एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए डिग्निफाइड वे ऑफ एजुकेटिंग। अगर वो हम नहीं करेंगे तो जो उड़ीसा से आए आप उनको एक बार दोबारा लाइए, माइक दीजिए उनको। वो 20,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, ना उनको खाना मिल रहा है, 10 लोगों के साथ रह रहे हैं, ना टॉयलेट मिल रहा है, क्या ये डिग्निटी एजुकेशन की? अपने बच्चों को तो पढ़ा लिया और अपने सारे नेताओं दोस्तों को इलीगली सैनिक फार्म्स में रखा हुआ है, कह रहे हैं कि नहीं हम ढोएंगे इलीगल स्ट्रक्चर। बंसल अभी तक ढोया आपने? अभी तक इलीगल स्ट्रक्चर मनीष शंकर अय्यर जी को वहां से ट्रांसफर करवाइए।
1: पहले नहीं सुनिए,
2: सो लेट मी आस्क दिस, लेट मी आस्क दिस यंग मैन, लेट मी आस्क दिस यंग मैन, व्हाट डू यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर? टुडे यू आर लिविंग इन दिल्ली पेइंग 20,000, टेल मी व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू बी डन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स?
0: मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एक्सपेक्ट अ लॉन्ग टर्म प्लान, बिकॉज मैम प्लान्स बना लिए जाते हैं बट इन पर काम नहीं होता है। इवन मैम पीपल भी बहुत इग्नोरेंट है हमारे सोसाइटी में, वो लोग ध्यान नहीं देंगे, उनको तब पता चलेगा जब मैम जब मोहल्ले में चोरी होती है तब हम लोग सतर्क होते हैं। तो मैम वही वाला है मैम, इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस, हम खाली गवर्नमेंट से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, हमें अपने साइड से भी करना चाहिए। मैम प्रोटेस्ट इज नॉट द ओनली वे मैम, क्योंकि प्रोटेस्ट से क्या होगा मैम, इट विल बी वन मंथ, उसके बाद क्या है, अभी हम बात भी नहीं करेंगे।
2: द गवर्नमेंट नीड्स टू गेट इट्स फंडामेंटल्स राइट एंड नॉट वेट फॉर समबडी टू हिट द स्ट्रीट ओनली इन ऑर्डर फॉर द गवर्नमेंट टू डू देयर जॉब, दैट इज नॉट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस। यस गो ऑन यंग लेडी।
12: As you all are focusing more on how Gen Z should bring all these matter to limelight, do you think that every other month the Gen Z has to come on the roads to bring these topics on the limelight?
2: Exactly. Just yeah, because padhne aayenge ya fir aapke liye jantar mantar pe baithe rahenge?
1: Nobody suggesting this.
2: Go on.
13: Sir, matlab har bar systemic failure ka matlab bacche hi kyun hote hain? Matlab bas main yahi puchna chahta hu. Har bar matlab koi bada incident hoga aur bacche jab marenge tabhi wo systemic failure ke baad hi wo resolve honge matlab cheeze.
7: Okay. ये मुझे लगता है ना कि कई बार हम लोग किसी बात की, चूंकि बच्चों की बहुत सी बात हो रही है, छात्रों की, मुंबई की चौल में सामान्य आदमी गिर के बिल्डिंग मर जा रहा है, दिल्ली में बिल्डिंग्स गिरती हैं, जो लेबर फोर्स होती है, जो लेबर आ रहा होता है वो मर जा रहा होता है, ये सबकी लाइफ और सबकी डिग्निटी का सवाल है।
2: yes.
7: हम लोग इस बहाने ये बात कर रहे हैं चूंकि बच्चे हैं इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि इस वक्त ये बात हो रही, ऐसा नहीं है कि दूसरी बिल्डिंग जो है वो सेफ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ब्रॉडर इस इशू को देखना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि आपकी बिल्डिंग से, और मैंने तो बहुत बड़ी बात कही, विकसित भारत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो इस देश में कोई भी बिल्डिंग इस तरह से नहीं गिरनी चाहिए। एक लाइन की बात है, उसमें बच्चे, बड़े, लेबर, कोई बड़ा अधिकारी, इसका कोई मतलब
2: नहीं। एंड आई थिंक देयर इज वन थिंग दैट एवरीवन सिटिंग हियर एग्रीज अपॉन, people have the right to live with dignity, irrespective of whether you are Gen Z or whether you are 100 years old, whether you're living in a hostel or a PG or in your own house. But how do you make that happen? Should it require for somebody to hit the streets, to go to Jantar Mantar, to start an agitation, to go to court, or to just expect that the government, the representatives that we vote in, are simply doing their job? And that is possible only when they are held accountable day on day. It's not enough to make reels and say that we are clocking it. It is important that if you really want to understand the grammar of Gen Z, you make sure that this Gen Z is alive, safe, and studying with dignity. Thanks very much to this wonderful group of people who have joined us here and to our experts. And a very angry Professor Ranganathan. Hopefully, we will see these reforms happen sooner rather than later. Thanks very much for joining us on People's Sansad. Because remember, when it really matters, the buck stops here. Thanks for watching.